Sumita, drumada la șobini, suna sini, sumatura mașini.

FM 101.8 MHz पर ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तीसरी तिथि। तदनुसार 24 जून 2026 सुबह के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

सुन रहे हैं आकाशवाणी जैसलमेर हम लोग 8 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत हम आपके साथ कर रहे हैं अरिजीत सिंह निकिता के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म भूत बंगला से।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: booking an apartment with good Wi-Fi is.
1: मेरी तो गाने वाली आवाज नहीं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत। यही सोचकर कई लोग

इन्हीं गीतों के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसमय का गोल्डन स्टेज है, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं NPR द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफ्ताब जाटव, मेहताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदे टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना। जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदे गिरती रहती है। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहाँ के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गई। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब सर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804445559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
3: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
4: Yes!
3: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
4: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
3: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
4: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
3: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
4: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
3: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
4: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
3: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
4: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
3: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
4: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
3: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लेंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो

0: बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
2: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
2: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
0: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
0: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
2: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
2: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
2: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
0: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
2: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
2: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
2: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी,
1: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
0: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
2: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
1: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
0: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
1: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
1: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक

0: भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
2: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के 3 प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन 3 तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
2: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थी, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्म भूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग या आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में अधिकारियों के साथ पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में अधिकारियों ने रिफाइनरी से उत्पादित विभिन्न पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के नमूने प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करती ये महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय लिखेगी। साथ ही पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, केमिकल और अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर राजस्थान को विनिर्माण और औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सांगानेर के त्रिपोलिया हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 1500 से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर भीलवाड़ा मार्ग के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर और बम्बाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए के सीवरेज और एसटीपी कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा भाकरोटा में नए ट्रॉमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सैटेलाइट अस्पताल का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं जेडीए नगर निगम स्वास्थ्य, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े 208 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रदेश में गौवंश को लंपी रोग से बचाने के लिए निशुल्क टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ब्यावर की एक गौशाला से करेंगे। पशुपालन विभाग ने सभी पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण कराने और बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करने की सलाह दी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से लोगों की यात्रा आसान हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। बूंदी शहर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत गढ़ पैलेस में शहनाई वादन से हुई। इसके बाद गढ़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की गई। इस अवसर पर पर्यटन सूचना केंद्र में फोटो चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय स्तर के चित्रकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। संग्रहालय सहायक जगदीश वर्मा ने बताया कि बूंदी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रानी जी की बावड़ी, सुख महल और 84 खंभों की छतरी पर पर्यटनों और आम जन का प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूंदीवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया संदेश में मुख्यमंत्री ने बूंदी को राजस्थान की अतुल्य सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक गौरव का अनूठा प्रतीक बताया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थी और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले

0: 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देश भर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी क्षेत्रों में तेज गर्मी और उमस का असर बरकरार है। राजधानी जयपुर में आज सुबह कई जगह हल्की बरसात हुई। भरतपुर में भी सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चल रहा है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मोमेंट।

0: मोमल सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो सखी शीतल
1: और मैं ललिता, हम दोनों की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
0: ललिता, आज हम जिन विषयों पर बात करने जा रहे हैं वो अधिकतर महिलाओं के ऊपर ही विषय है, तो अगर आज वैसे ही प्रोग्राम ही हमारा कार्यक्रम ही महिलाओं के ऊपर ही है,
1: बिल्कुल,
0: तो आज कुछ विषय ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए प्रेरित विषय है ताकि उनके ऊपर अगर महिलाएं उन विषयों पर ध्यान दे तो वो आगे जाके कुछ कर सकती है। तो आज कार्यक्रम की जो शुरुआत है हम कुछ पंक्तियों से कर देते हैं कि पंख नहीं हौसलों से उड़ान।

0: इसमें कई पक्ष ऐसा है, एक पक्ष है जो चाहता है कि नहीं महिलाएं आए आगे होके अपनी भागीदारी निभाए, लेकिन कुछ ऐसे पक्ष के लोग भी हैं विपक्ष में रहते हैं जो कहते हैं नहीं महिलाओं की राजनीति में इतनी जरूरत नहीं है। तो यह आज भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी में आज हम हमारी महिलाओं से बात करेंगे कि लोकतंत्र में जो महिलाएं हैं उनकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार है।
1: बिल्कुल शीतल, और आज का जो आज की बात है वो भी इसी पर है। जैसा कि आपने कहा कि आज के क्षेत्र में जो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरत है, वो भी लोकतंत्र के क्षेत्र में। तो जब हम स्वतंत्रता की, संप्रभुता की और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आज आप देखती हैं कि हम सिर उठाकर खड़े हैं, तो हमारी ताकत के पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ है? वो ये है कि हम महिलाओं का और हमारे मजबूत लोकतंत्र का। और इस लोकतंत्र की आत्मा शीतल कहाँ बसती है? हमारी इन जो इसकी आत्मा है वो हमारे देश के हर नागरिक और भागी जो नागरिकों की भागीदारी है। लेकिन सोचो शीतल कि क्या कोई भी समाज, कोई भी देश या कोई भी लोकतंत्र तब तक पूरा हो सकता है क्या जब तक उसमें आधी आबादी यानी कि हम महिलाएं जो हैं पूरी तरह से सक्रिय ना हो? और इसमें हमारा सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लोकतंत्र शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में वही बातें आती है जैसे कि चुनाव ले लिया, वोट, सरकार और राजनीतिक दल। अक्सर महिलाएं यही सोचती है। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ 5 साल का एक बार वोट डाल देने का नाम नहीं है। लोकतंत्र तो एक जीवन की पद्धति है, एक विचार है, जहाँ हर व्यक्ति की आवाज़ की अपनी एक कीमत होती है। और जब हम इस आवाज़ में एक महिला की आवाज़ को शामिल करते हैं तो समाज में संतुलन आता है और संवेदनशीलता आती है और एक नए युग का सूत्रपात होता है।
0: एकदम आपने सही कहा। और जो बात करते हैं ना ललिता हम की लोकतंत्र की या राजनीति की, तो ऐसा नहीं है कि सीधे घर से निकल के हम लोग राजनीति के क्षेत्र में आ गए।
1: बिल्कुल,
0: उसके लिए भी हमें शुरू से मतलब एक वो प्लानिंग से बाहर निकलना पड़ता है। अगर आपके अंदर कोई महिलाओं में अगर प्रतिभा है और उसको वो चाहती है कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आना चाहती हूँ, तो उसकी शुरुआत सीधे संसद से या केंद्र से नहीं होती है, उसकी शुरुआत जमीनी स्तर पर होती है।
1: बिल्कुल,
0: आप चाहे सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, जो महिलाएं हैं उनको अपने मतदान के बारे में जानना चाहिए कि मतदान कितना जरूरी है और लोगों को भी उसके प्रति जागरूक करना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो जमीनी स्तर की जो चीजें होती है वो महिलाओं को बहुत ज्यादा करनी चाहिए कि जैसे जो ग्राम पंचायत होती है, विकास ग्राम विकास सभाएं होती है, इसमें जाए, इसमें अपनी भागीदारी निर्धारित करें। और इसके बाद यहाँ पे शिक्षा के, महिलाओं के शिक्षा के, समानता के जो मुद्दे होते हैं उनको उठाए, तो इससे महिलाओं को राजनीति के अंदर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है ललिता। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं में शिक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आप लोगों को भी जागरूक कर सकते हो। आपको पता होंगे कि आपके लिए क्या क्या नियम होते हैं, क्या कायदे होते हैं। और साथ ही साथ जितने भी जो सामाजिक आंदोलन होते हैं ना, कि जैसे एनजीओ है, इसके थ्रू भी आप राजनीति के क्षेत्र में आ जा सकते हैं। पहले आप यहाँ पे थोड़ा काम कीजिए जमीनी स्तर पर, उसके बाद आप धीरे धीरे लेवल, एक एक लेवल पार करके जो आप है केंद्र सरकार तक या राज्य सरकार तक पहुंच सकते हैं।
1: बिल्कुल शीतल, और अगर हम जैसा कि आपने कहा जमीनी स्तर पर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो अगर हम भारत के इतिहास को पलट कर देखें तो भारतीय महिलाओं ने हमेशा समाज को दिशा देने का काम किया है। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल से ही गार्गी और मैत्रेय से लेकर मध्य काल में रानी लक्ष्मीबाई, छलकारी बाई, और आधुनिक काल में अगर महात्मा गांधी के साथ अगर हम स्वाधीनता आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली लाखों महिलाओं तक की हमारी जो जड़ें हैं ना, वो हमेशा हमारा नेतृत्व कर रही है। और जब देश का संविधान बन रहा था तब संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी, जिनमें दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता और बेगम एजाज रसूल जैसी दूरदर्शी महिलाएं थी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आजाद भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मिले। और दुनिया में कई बड़े बड़े विकसित देशों ने भी अपनी महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत संघर्ष के बाद, सालों बाद किया था। लेकिन धन्य है हमारा भारत और हमारे संविधान निर्माता, जिन्होंने पहले दिन से ही, पहली ही सांस से महिलाओं को राइट टू वोट यानी कि मतदान का समान अधिकार दिया। तो शीतल ये बात, इस ये जो है इस बात का प्रमाण है कि हमारा लोकतंत्र शुरू से ही महिलाओं की शक्ति पर भरोसा करता आया है। लेकिन आज हमें खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या हम सिर्फ एक मतदाता बनकर संतुष्ट हैं, या हमें नीति निर्धारण में, कानून बनाने में और समाज बदलने में अपनी सक्रिय भूमिका जो है निभानी होगी। तो महिलाओं के लिए लोकतंत्र में

0: सक्रिय भूमिका का जो असल मतलब वो है कि सबसे पहले तो हमें सचेत और स्वतंत्र मतदान, जैसा कि अक्सर शीतल देखा गया है कि घरों में महिलाएं तो है ना वोट तो डालने जाती है, लेकिन उनका वोट जो है परिवार के पुरुषों के फैसलों पर निर्भर करता है। पति ने जहां वोट का कहा कि वहां बटन दबा देना है तो वहीं दबा दिया, पिता ने जिसे चुना तो उसे ही वोट दे दिया। तो बहनों, इस सोच को भी बदलना एक सक्रिय भागीदारी की पहली सीढ़ी है, जो हमें खुद से सोचना होगा और उम्मीदवारों के काम को देखना होगा और अपनी समझ को बिना किसी दबाव के अपने मत का प्रयोग करना होगा। और आपका वोट जो है आपकी अपनी ताकत है और इसे किसी की पसंद पर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी, अगर मैं बात करूँ नीतियों और अधिकारों के जागरूकता के प्रति, तो सक्रिय भागीदारी का मतलब है कि आपको अपने अधिकारों का पता हो। सरकार महिलाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं ला रही हैं, इसकी जानकारी रखना, और जैसा कि शीतल आज डिजिटल युग में हम जी रही हैं तो इन जानकारियों को पाना और आसान हो गया है हमारे लिए। तो जब हम जागरूक होंगी तभी हम दूसरों से ये सवाल भी पूछ सकती हैं।
1: एकदम आपने सही कहा। और ललिता, देखो जैसा आपने कहा कि हमारे पुराने समय से देखा जाए तो महिलाएं मतलब राजनीति के क्षेत्र में थी, महिलाओं को हमेशा समान अधिकार दिए गए, लेकिन देखा धीरे धीरे लोगों की सोच थोड़ी सी समाज में बदलती गई, लेकिन अब वापस से नया समाज का निर्माण हो रहा है, लोगों की सोच में अंतर आने,
0: बिल्कुल काफी परिवर्तन आया है,
1: बहुत परिवर्तन आया है। पहले थोड़ी रूढ़िवादिता थी हमारे समाज में, ये कहा जाता था कि महिलाएं क्या करेगी, लेकिन आज महिलाओं को भी बाहर निकल के उनकी पसंद के हिसाब से काम करने की जो है अनुमति घर से भी मिल जाती है, तो महिलाओं

0: लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभानी है उसके लिए सबसे पहले तो आप जागरूक रहिए और अपना मतदान, जैसे कि ललिता ने कहा कि जो आप सोच समझ के अच्छे कैंडिडेट को पहले मतदान कीजिए, पहले सोचिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, उस व्यक्ति को ही कीजिए, किसी के कहने पर मतदान ना कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: और अपनी सोच और अपनी समझ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाएं जो है पहले भी है और अभी भी कई महिलाएं जो है अपना परचम फैला रही है और आप भी आगे जाके अपना परचम
1: फैला सकती है।
0: तो ललिता बातें तो बहुत होती रही, अब महिलाओं को सुनाते हैं हमारी प्यारी सखियों को एक प्यारा सा गीत।

है फिजा है जमी की नहीं, तो घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने।

फिजा है जमी की नहीं, तो घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तो पंछियों की।

0: सखियों अभी आप सुन रहे थे फिल्म फिजा का ये प्यारा सा गीत जिसे गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने। आइए अब सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ललिता, हम बात कर रहे थे हमारी महिलाओं के, कि मतलब कि लोकतंत्र में महिलाओं को एक सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, और ये तो बात हुई थी राजनीति में आने की। बट ललिता, ऐसा है ना कि एक पहले का समय था जब महिलाओं के पास प्रतिभा थी, लेकिन उसको बाहर ले जाने का उनके पास इतना समय नहीं था, वो घर परिवार में ही पूरी हो जाती थी। और आज देखा जाए तो आज महिलाओं के उन्हीं कामों को आप देखिए, किचन से रिलेटेड आज कुकिंग के शो महिलाएँ कर सकती हैं, हाउस मैनेजमेंट के भी आजकल कोर्सेज होने लग गए हैं कि हाउस को कैसे मैनेज किया जाए, मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए। तो ये शुरुआत जो है हमारे घरों से ही निकली है। तो महिलाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए जरूरी नहीं है कि उनको कुछ स्पेशल कुछ करने की जरूरत है, उनको अपने आप ही अंदर से अपनी स्किल्स को निखारना पड़ेगा कि उनको किस में सबसे ज़्यादा रुचि है। जैसे अगर किसी महिला को देखा जाए ललिता की सिलाई में रुचि है, तो वो सिलाई के बारे में सीखे, सिलाई

0: एक बेसिक सिलाई आपको आती है वो अच्छी बात है, बट आज के समय में देखिए सिलाई में भी कई तरीके के एक्सपेरिमेंट होने लग गए हैं। तो महिलाओं को सिलाई से रिलेटेड कुछ सीखना है तो उसके लिए कुछ निरंतर सीखे, और सिलाई हुई, कढ़ाई हुई, बुनाई हुई, कुकिंग हुई, आजकल देखिए हर तरीके के कोर्स के लिए क्लासेस होने लग गई है। और इसके लिए जरूरी भी नहीं है कि हम महिलाओं को घर से बाहर निकलना पड़े या घर परिवार को छोड़ना पड़े। फोन के, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से भी हम लोग जो है कि इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम अपने आपको कुछ अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ललिता की जैसे नियमित अभ्यास करें हम, कौशल प्रशिक्षण जो है हमारा उसके ऊपर ध्यान दें, निरंतर सीखने की जो हमारी मानसिकता है पहले तो उसको विकसित करें, और साथ ही साथ कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, कार्यशालाएं होती है, मेंटरशिप कार्यक्रम होते हैं, इनके माध्यम से भी हम अपने अंदर के छिपी हुई क्षमताओं को एक पेशेवर रूप दे सकते हैं। तो ये तो मतलब आप बताइए ललिता कि किस तरीके से जो हमारी महिलाएं हैं वो अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए क्या ऐसा करें कि जिससे उनकी प्रतिभा तो निखरे ही निखरे, साथ ही उनका जो घर परिवार है वो भी अच्छे से मैनेज हो जाए।
1: बिल्कुल शीतल, हमें अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए हम कई कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी मैं ना शीतल किसी महिला से बात करती हूँ, मैंने एक दो महिलाओं से, सखियों से बात भी की है, तो वो ये कहती है कि अरे भाई, अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इस उम्र में हम नया क्या सीखें। या फिर काफी ये कहती हैं कि अब तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो
0: ये बात एकदम आपने सही कही। और कुछ महिलाएं तो ऐसी है कि उनकी शादी को कुछ साल ही हुए हैं तो भी वो कह देती है कि अब तो उम्र हो गई है।
1: बिल्कुल
0: बल्कि उम्र तो एक नंबर होता है, जस्ट नंबर जो कहा जाता है कि एक नंबर है।
1: और आप कह रही थी कि प्रतिभा को निखारें कैसे, तो अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए कुछ आसान से कदम हैं वो आप कर सकती हैं, जैसे कि खुद को पहचानिए। तो मैं तो ये कहूंगी कि आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे करते वक्त आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है, तो वही है आपकी प्रतिभा। और पूरे 24 घंटे में सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालिए, जब आपका परिवार सो रहा है या दोपहर का खाली समय है, तो यह समय सिर्फ आपका और आपके हुनर का होना चाहिए। और इसके अलावा कई जो महिलाएं हैं तो उनमें अगर थोड़ी बहुत कमी होती है तो उनसे डरती हैं, तो डरिए मत। शुरुआत में हो सकता है कि आपकी बनाई जो, अगर आप अच्छी पेंटिंग बनाती हैं तो उतनी अच्छी ना बने, या आपने कोई कविता लिखी है उतनी अच्छी ना लिखी जाए, उनमें उतना तालमेल ना बैठे, तो कोई बात नहीं, शुरुआत करना सबसे अच्छी बात है। और आज मैं आपको ऐसी ही, हमारी एक सखी थी जिसकी मैं बात बताती हूँ, कुछ तो झिझकती हैं लेकिन कुछ एक सखी भी है जो अपनी प्रतिभा को उन्होंने कैसे निखारा है। ऐसी ही एक सखी थी पुणे में रहने वाली, जिनका नाम है लता दीदी। तो लता जी 55 साल की थी जब उनके पति का देहांत हो गया, फिर वो डिप्रेशन में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बचपन का जो हुनर था, मसाले बनाने की कला, उसको दोबारा याद किया। उन्होंने घर पर ही, आपको पता है, शुद्ध और पारंपरिक मसाले पीसना शुरू किया। और शुरुआत में तो उनके पड़ोसियों ने उनसे वो खरीदा, लेकिन उनकी प्रतिभा में वो दम था कि आज उनका खुद का होममेड मसालों का ब्रांड है, और वो हर महीने हजारों रुपए कमाती हैं, और कमाने के साथ साथ ही 4 दूसरी महिलाओं को भी उन्होंने रोजगार दे रखा है। तो सोचो शीतल, अगर लता जी यही सोचकर बैठ जाती कि अब इस उम्र में क्या करना, तो क्या वो अपनी पहचान बना पाती? बिल्कुल भी नहीं। तो आज का दौर, जैसा कि आपने कहा, डिजिटल का दौर है, तो अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप बहुत सोशल मीडिया से नई कुकिंग चैनल अपना खोल सकती हैं। अगर आपको सिलाई क्राफ्ट आता है तो आप नए प्रोडक्ट भी बेच सकती हैं। और आपको बच्चों को पढ़ाना आता है ना, तो आप सबसे अच्छा ऑनलाइन ट्यूशन भी दे सकती हैं। तो आपकी 4 दीवारी अब आपके हुनर की कैद नहीं बल्कि आपकी लॉन्च पैड है।
0: एकदम सही कहा आपने। और जैसा कि आपने कहा कि मतलब जैसे आपने लता जी की कहानी बताई, ऐसे हमारे भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए या शहरी क्षेत्रों में, जो एक समय आने पर उन्हें लगा कि अब हमारा जीवन खत्म हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की, अपने आप को निखारा, अपनी प्रतिभा को निखारा। तो प्रतिभा में बस यही कहा हम लोग अपनी सखियों से यही कहेंगे कि सबसे पहले तो आप अपनी रुचियों को और अपनी योग्यता को मजबूत बनाइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है।
1: बिल्कुल, देर तो करनी ही नहीं चाहिए और अपने हुनर को एक ना एक मौका जरूर देना
0: और
1: चाहिए।
0: नहीं, ऐसा होता है ना ललिता की, जरूरी नहीं, कई अक्सर ये महिलाएं कहती है कि हमारा परिवार, आर्थिक स्थिति हमारे परिवार की अच्छी है तो हमें जरूरी नहीं कि हमें बाहर जाके अब काम करना है। तो आप भले काम ना करें बाहर जाके, लेकिन आप अपने खुशी के लिए घर पे भी उन चीजों को कर सकते हैं, अपने घर को सजाने के लिए, या आप अच्छा खाना अपने घर परिवार के लिए भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त काम करने के लिए ही बाहर निकलना है। इसके साथ ही साथ निरंतर सीखना, देखिए सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में आप कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आपका आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि यार अब तो पूरा हमारा सब कुछ सेट हो गया है, अब हम क्या करें, तो उस उम्र में भी कई देखिए जो 60 प्लस की महिलाएं हैं, उन्होंने भी आज के समय में भारत में ऐसी कई महिलाएं जिन्होंने 60 प्लस के बाद अपना बिजनेस चालू किया है और उसके बाद भी उन्हें बहुत ज़्यादा जो है सफलताएं मिली है। साथ ही अपने क्षेत्र के जो अनुभवी लोग होते हैं ललिता, उनको जो आपका मार्गदर्शन करे, उन लोगों से मिलना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, आपको मतलब पीछे नहीं धकेले, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो कोशिश करे कि नहीं
1: प्रोत्साहित करे,
0: प्रोत्साहित करे। ऐसे लोगों के साथ आपको मिलके बैठना चाहिए, समान विचारधारा वाले लोगों से मिलना चाहिए। अपने काम को सोशल मीडिया पे, या आप देखिए कि जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया, आजकल तो लोकल भी देखा जाए तो मेले लगते हैं, ऐसे प्रदर्शन समूह लग जाते हैं, वहाँ पे भी आप देखिए लोकल ब्रांड कितने चल जाते हैं, तो आप वहाँ जाके भी अपने काम को प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकती है। और अंत में ललिता अपनी सखियों को यही कहूंगी कि इन सब के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अपने ऊपर विश्वास रखना।
1: बिल्कुल,
0: अगर आपने विश्वास रखा तो आप किसी भी एज में हैं, आप उस एज में वो काम कर सकती हैं और असफलता से ना डरे। देखिए कि जरूरी नहीं है कि आपने कोई भी काम चालू करा, ललिता हम भी कोई काम चालू करते हैं या हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि कुछ भी चालू करने से सीधे सफलता नहीं मिलेगी हमें। सफलता के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है और जरा सी अगर कोई असफलता आ जाए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। और सीखने की प्रक्रिया जो होती है उसमें धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं आपसे यही कहूंगी हमारी सखियों से ललिता कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है, अपने पे विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और असफलताओं से घबराइए, अपने आप सफलता मिलेगी।
1: तो शीतल, हमने बहुत सारी अपनी सखियों से बातचीत कर ली है, तो क्यों ना एक मधुर गीत सुना दिया जाए अपनी सखियों को।
0: जरूर।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: शीतल, रोज रोज वही रसोई, बच्चों की पढ़ाई, दफ्तर का काम और घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कई बार हम थक जाते हैं ना। ऐसा दिल करता है कि बस एक दिन के लिए हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं, खुली हवा में थोड़ा सा सांस ले और थोड़े से हंसे खेले, या फिर अपने सहेलियों या परिवार के साथ एक बढ़िया सी पिकनिक मनाएं। और इन दिनों तो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है, तो पिकनिक का नाम सुनते ही ना हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। लेकिन एक अच्छी सी पिकनिक तभी कामयाब होती है जब हम सही जगह चुने और साथ ही साथ सुरक्षित रहे। तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि पिकनिक स्पॉट पर चुनते समय जब भी हम कहीं पिकनिक पर जाएं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारी जो खुशियां हैं ना उसमें बिल्कुल भी खलल ना आए। तो जब भी हम मिलकर कहीं सहेलियों के साथ या बच्चों को लेकर पिकनिक का प्लान बना रही हैं तो सबसे पहले जरूरी बातें हैं वो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, यानी कि सुरक्षा, हमारी सेफ्टी। तो आप क्या कहेंगी?
1: एकदम आपने सही कहा ललिता कि जब हम भी कहीं भी पिकनिक जाते हैं, देखिए कि पिकनिक पे अब क्या हो गया है ना कि एक थोड़ा सा ऐसा हो गया डर का माहौल बन जाता है। अभी भारत में आप देखिए कि कई बार ऐसे कुछ केसेस हो गए हैं कि मतलब ना ध्यान देने पर छोटे छोटे बच्चे हैं या पूरी की पूरी फैमिली है वो कहीं ना कहीं पिकनिक में किसी दुर्घटना का शिकार
0: शिकार हो
1: हो
0: जाते
1: जाती है।
0: हैं।
1: तो एक अच्छा पिकनिक स्पॉट चुनने के लिए, आपकी यात्रा है उसको सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम आसपास कहीं जा रहे हैं वो तो चलता है, लेकिन अगर हम किसी दूरी के मामले में कहीं थोड़ा सा दूर जा रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि उससे हमारे घर से दूरी कितनी है, मौसम वहाँ का कैसा है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी है और वहाँ की सुविधाएं कैसी है। लोग अक्सर बस ये देख लेते हैं सोशल मीडिया में कई बार कुछ पिक्चर्स या कुछ वीडियो देख के कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए, लेकिन इससे क्या होता है ना कि फिर आपको ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि हमेशा जैसे अब दूरी की मैंने बात की तो ऐसे स्थान चुनने चाहिए हमें जो बहुत दूर ना हो और वहां तक पहुंचने के रास्ते अच्छे हो, क्योंकि क्या होता है कि हमने दूरी तो देख ली कि नहीं कोई नहीं हम वहां पहुंच जाएंगे, अगर वहां का मौसम खराब हो गया तो हम वापस कैसे आएंगे। और जब बच्चों के साथ जाया जाए, फैमिली के साथ जाया जाए, तो काफी चीजों के बारे में ध्यान देना चाहिए। उसके साथ ही साथ वहां पे कैसी जरूरी सुविधाएं हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर पानी वाली जगहें हैं तो पानी की गहराई कितनी है, आसपास अगर जंगलों में जा रहे हैं, हम जंगल में पिकनिक मनाने आजकल काफी लोग चले जाते हैं, तो उसके बाद भी देखना चाहिए कि प्राकृतिक जगहें हैं, झील है, जंगल है, वहां पे पानी की गहराई, जंगली जानवरों के प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए।

0: बच्चों को समझाना चाहिए कि वो इधर उधर ना जाए। तो पिकनिक स्पॉट में आप जरूर जाइए, पिकनिक मनाइए अच्छे से, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सुरक्षा के साथ।
1: बिल्कुल शीतल। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, तो अकेले या सुनसान जगह पर जाने से हमें बचना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई ना हो, शांति हो, लेकिन ध्यान रखिए, जब ज्यादा सुनसान इलाका होता है या जैसे घने जंगलों के बीच में एकदम अछूते जल प्रपात होते हैं, वो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं होते हैं। हमेशा हमें ऐसे स्पॉट चुनना चाहिए जो थोड़े प्रसिद्ध हो, जहाँ लोगों की थोड़ी आवाजाही हो, और लोकल पुलिस और नेटवर्क की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। जिस जगह आप जा रही हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क कैसा रहता है ये ज़रूर पता करें, और भगवान ना करे कोई इमरजेंसी हो या आपका फ़ोन चालू नहीं हो रहा हो, तो फ़ोन चालू होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उस इलाके के पास में कोई पुलिस चौकी या सहायता केंद्र है या नहीं है, इसकी जानकारी भी आप जो है इंटरनेट से पूरी तरह निकाल सकती हैं। तो अक्सर हम सोशल मीडिया पर जब अच्छी अच्छी तस्वीरें देखते हैं, जैसे आपने कहा कि कितना सुंदर झरना है, चलो यहीं पर चलते हैं, यहीं तस्वीरें खिंचाएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए हकीकत जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो मौसम का मिजाज है ना, मानसून के मौसम में कभी भी जो है नदी के किनारे पहाड़ों पर एकदम नीचे जल प्रपातों के पास जाने का प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाइए, क्योंकि पहाड़ों में जो है लैंडस्लाइड और नदियों में अचानक पानी बढ़ने का खतरा रहता है। और गर्मी के दिनों में ऐसी जगह चुनिए जहाँ खूब सारे घने पेड़ हों, छाया हो, और इसके अलावा बुनियादी सुविधाएं हों, जैसे कि हम महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा समस्या रहती है वॉशरूम की। तो पिकनिक स्पॉट चुनते वक्त 100% पक्का कर लीजिए कि वहाँ पर साफ सुथरे टॉयलेट्स हैं या नहीं हैं। अगर आप बच्चों के साथ या बुजुर्गों के साथ जा रही हैं तो वहाँ बैठने के लिए कोई बेंच या शेड है या नहीं है, ये ज़रूरी होना भी बहुत ज़रूरी है। और शीतल, अगर खाने पीने की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कुछ जगह तो बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन वहाँ आसपास चाय पानी की दुकान भी नहीं होती है। तो अगर आप ऐसी जगह जा रही हैं ना, तो घर से पर्याप्त पानी और सूखा नाश्ता लेकर तो जाना ही चाहिए। तो बातें तो बहने और भी है, और लेकिन मुझे पता चला है कि आपको एक खूबसूरत गाने का इंतजार हो रहा है, तो शीतल क्यों ना सुना दे एक मधुर गीत।
0: जरूर, और ये गीत जो है ये हमारी सखियों को और ज्यादा पसंद आएगा, और इनसे जो पिकनिक का उनका जो एक अंदर से एक उत्साह चालू हो गया होगा हमारी बातों के बाद वो
1: बिल्कुल
0: दुगना हो जाएगा। तो आइए सुनाते हैं हमारी सखियों को एक प्यारा सा गीत।

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. I love you.

0: I love you. I love you.
1: सखियां, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम आपके हैं कौन का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया था हरिहरन, उदित नारायण और हेमा शंकर ने। ललिता, अक्सर हम हमारे कार्यक्रम के जरिए हमारी सखियों से कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में उनसे बताते हैं, ताकि हमारी जो सखियां हैं उस कार्यक्रम के जरिए उन योजनाओं के लाभार्थी हो सके और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी उन योजनाओं के बारे में बता सके। तो उसी कड़ी में आज हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, वो योजना सबसे ज्यादा हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम सखियों बात करेंगे आपसे आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके अंदर जो पात्रता अधिकार के जो परिवार होते हैं उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क और कैशलेस इलाज प्रदान करती है। साथ ही ये सुविधा देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। इसके साथ साथ जो इस योजना के अंतर्गत जो लोग होते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं या बीपीएल कार्ड धारक है या 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो सभी लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सभी को इस योजना का पात्रता का अधिकारी बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात जो है ललिता इस योजना की यही है कि लोग ये अक्सर क्या है ना कि जो परिवार होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में देखे या जो मतलब जो कहते हैं ना कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इलाज के समय थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: वो ये सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, क्योंकि उनके पास इतने आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं होते कि वो अगर उनको कोई किसी तरीके की कोई बड़ी बीमारी या कोई गंभीर रोग भी लग जाता है तो उसका इलाज करा सके। वो अपने जीवन को टालते रहते हैं कि हम आगे जाके देखेंगे, और वो आगे जाके वो बीमारी जो है बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो ये योजना इसलिए भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं अपनी सखियों से मतलब ललिता हमारी सखियों से ये कहना चाहती है कि इस योजना के अंतर्गत कैंसर, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और डायलिसिस जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं जिनके इलाज के लिए भी जो कमजोर मैं कहती हूँ ना कि कमजोर रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं वो सोचने से पहले 10 बार सोचते हैं करवाने से पहले कि हम इसका इलाज करवाए कि नहीं, उन योजनाओं को उन बीमारियों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें साथ ही साथ कई प्रकार के सर्जिकल और मेडिकल पैकेज भी शामिल है।
2: बिल्कुल शीतल, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे सखियों को, और थोड़ा सा इसके गहराई से और समझते हैं कि जब व्यक्ति कोई बीमार होता है तो खर्च सिर्फ अस्पताल के बिस्तर का नहीं होता। अस्पताल जाने से पहले की जांचें जो होती है, डॉक्टर की पर्ची की बात कर ले या अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जो हफ्तों तक चलने वाली दवाइयाँ होती है ना, ये सब मिलकर भी हमारे लिए कई बार बड़ा बोझ बन जाती हैं। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के संवेदनशीलता को देखो शीतल, कि इसके तहत अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके भर्ती होने के 3 दिन पहले तक सभी जांचें और दवाइयां इसमें शामिल है, और जब मरीज ठीक होकर लौटता है तो उसके बाद भी 15 दिनों तक दवाइयां जो है डॉक्टर की देखरेख में जो ये खर्च जो है ना ये योजना ही उठाती है। और अगर हम बात करें विशेषकर हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, प्रसव या डिलीवरी के समय जो होने वाली किसी भी तरह की जटिलता, सीजेरियन ऑपरेशन और पैदा होने वाले जो नवजात शिशु की शुरुआती देखभाल का पूरा खर्चा इस योजना के दायरे में आता है। यानी कि अब डिलीवरी के समय किसी भी साहूकार या कर्ज किसी या किसी के आगे हाथ फैलाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और सरकार जो है खुद ही आपकी इस जिम्मेदारी को निभा रही है। तो हमारे बहुत सारे जो भाई बहन हैं रेडियो जो मुझे सुन रहे हैं, उनके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये योजना तो बहुत अच्छी है लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम जो इस योजना में है या नहीं, तो हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो श्रोताओं, इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने के लिए या कोई लंबा चौड़ा फॉर्म भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार ने साल 2011 की आर्थिक और सामाजिक जनगणना के आधार पर गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की एक सूची तैयार की है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूर, जो कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार हैं या ऐसे परिवार जिनकी कोई मुखिया महिला है तो वे इस में मुख्य रूप से शामिल हैं। और अपनी जो पात्रता है उसको जांचने के लिए आपको मैं आसान तरीके बता देती हूँ कि पहला तरीका है कि फ़ोन की घंटी, आप अपनी मोबाइल से टोल फ्री नंबर 1-4-5-5-5 इस पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर 24 घंटे चालू रहता है और आप अपनी भाषा में बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और शीतल, दूसरा तरीका है इंटरनेट, आप सरकार की वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाकर MI एलिजिबल वाले विकल्प पर अपना मोबाइल नंबर डालकर देख सकते हैं। और तीसरा जो तरीका सबसे आसान है वो आप अपने गांव या कस्बे या नज़दीकी जनसेवा केंद्र CSC यानी कि ई मित्र पर जा सकते हैं और किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर वहां मौजूद जो आयुष्मान मित्र हैं उनसे मदद मांग सकते हैं। तो कार्ड बनवाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, आपका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड। तो बस इन दो दस्तावेजों की मदद से आप आयुष्मान कार्ड जो है बनवा सकती हैं जिस और इसे अपने पास सुरक्षित रख सकती हैं।
1: एकदम सही कहा आपने, बहुत अच्छी और सटीक जानकारी दी हमारी सखियों को जो इनके काम आएगी। और इसके साथ ही साथ इनके आसपास के भी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जो महिलाओं को लगेगा कि हमारी सखियों को कि नहीं उनको इस योजना की जरूरत है तो वो उनको भी बता सकती है। और सखियों सबसे अच्छी खासियत इस योजना की ये है, मैं आपको जो बताना जा रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर आपने अपना कार्ड बनवा लिया तो आपको सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही जाके ही इलाज करवाना है, ऐसा नहीं है। इसमें कई काफ़ी निजी जो अस्पताल है उन्हें भी सरकार ने शामिल किया है। तो आपके आसपास जो भी निजी अस्पताल है जो इस योजना के अंतर्गत शामिल है आप वहाँ जाके भी अपना इलाज करवा सकते हैं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का या आसपास के लोगों का जो है इलाज के लिए उन्हें बता सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है ललिता जो हमने हमारी सखियों को बताई है और उम्मीद यही रहेगी कि हमारी जो सखियां हैं इस योजना का लाभ लेगी और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेगी। तो अब सुनाते हैं हमारी सखियों को एक प्यारा सा गीत।

0: तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए।
1: कितने पास है।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फना का ये प्यारा सा गीत। सखियों, अब जाते जाते हम आपसे बस कुछ टिप्स जो है सौंदर्य की वो आपको देना चाहेंगे, तो ललिता हमारी सखियों को कुछ आप सौंदर्य की टिप्स दे दीजिए।
1: बिल्कुल, अगर हम रोज सुबह सिर्फ एक दो चम्मच कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएंगे तो हमारी त्वचा जो है ना कोमल हो जाती है। और बस 5 मिनट लगाइए और सादे पानी से धो लीजिए, यह आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से मॉइस्चराइजर करता है।
0: तो ये थी आज की हमारी सौंदर्य टिप्स। अब सखियों, समय हमें इजाजत नहीं दे रही कि हम अपनी बातों को आगे भी जारी रख सके, तो अपनी रेडियो सखी शीतल
1: और मैं ललिता, हम दोनों
0: इजाजत, अगले कार्यक्रम में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम मोमल, या आकाशवाणी जैसमे का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2 बजे हैं, आइए सुनते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सदस्य के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: I also refer to the unwarranted...
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूँ। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहाँ राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: It has always been, is and will remain so.
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902। और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
4: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
4: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड

0: इंग्लैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदुरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गई। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आजमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
1: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले एक से दो दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदेम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारा ने मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी जर्नल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आरोग्यम।
3: श्रोताओं नमस्कार। वादे के मुताबिक आरोग्यम कार्यक्रम के इस अंक में हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके साथ लेकर बातचीत एक विशेषज्ञ के साथ, ताकि हम सभी को स्वास्थ्य का लाभ मिले। इस बार हमारे साथ हैं दंत विशेषज्ञ डॉक्टर दीप भाटिया। नमस्कार डॉक्टर।

0: स्वागत है आपका।
1: नमस्कार,
0: जी
1: मैं डॉक्टर दीप भाटिया, डेंटल
0: जी
1: फोर्ट जैसलमेर से।
0: जी
1: मैं आज आपको तो दांतों के लिए कुछ
0: जी
1: मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो हर व्यक्ति, हर परिवार और हर गांव शहर से जुड़ा हुआ है।
0: जी
1: हमारे दांत और हमारे मुंह की सेहत।
0: जी
1: अक्सर हम दांतों की तरफ तभी ध्यान देते हैं जब दर्द शुरू हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश दांतों की बीमारियां दर्द शुरू होने से बहुत पहले से शुरू हो जाती है।
0: जी
1: तो आज मैं थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज तरीके से आपको समझाना चाहता हूं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब।
1: मैं जन्म से लेके बुढ़ापे तक अलग अलग उम्र में कौन सी दांतों की समस्याएं आम हैं, उनका बचाव कैसे किया जा सकता है और कब चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।
0: जी जी जी बिल्कुल
1: तो सबसे पहले मैं नवजात और छोटे बच्चे जो जिनका जन्म हुआ है और 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं
0: हाँ
1: उनके
0: जी
1: बारे में मैं आपको बताऊंगा।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब।
1: सबसे पहला विषय होता है कि दांत कब आते हैं। आमतौर पर बच्चे का पहला दांत 6 महीने के आसपास निकलना शुरू हो जाता है।
0: जी
1: कुछ बच्चों में थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, कुछ में थोड़ा देर से भी हो सकता है।
0: जी
1: तो इसलिए यदि किसी बच्चे का पहला दांत 10 या 12 महीने में भी आता है तो भी कोई घबराने की बात नहीं होती।
0: जी
1: अच्छा, अब सबसे कॉमन समस्या आती है टीथिंग, जिसको बोलते हैं दांत निकलना। कई बार पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब इनके दांत निकल रहा है बच्चे से, तो चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा।
0: हाँ बिल्कुल
1: तो इनमें ज्यादातर बच्चों को क्या समस्या आती है, मसूड़ों में खुजली आना, बच्चे की इच्छा होती है कुछ ना कुछ चीज चबाने की। कभी
0: हाँ जी
1: कोई खिलौना दिख गया पास में, कुछ भी दिख गया, वो मुंह में लेके चबाना शुरू कर देता
0: जी
1: है। तो ऐसे समय में एक मेडिकल पे टीथिंग रिंग अवेलेबल होती है।
0: अच्छा
1: कोई भी पेरेंट्स जाके उसको टीथिंग रिंग आप बच्चे के मुंह में डाल सकते हो, जिससे क्या वो चबाते भी रहते हैं। अच्छा, उसको साफ भी करना रहता है, जैसे बच्चे ने काम में लिया थोड़ी देर बाद उसके मुंह से निकाला, उसको साफ किया, रख दिया, तो उससे क्या है कि बच्चे को एक तो इरिटेशन कम हो जाती है मसूड़ों पे,
0: जी
1: और दूसरा एक और इलाज होता है कि साफ उंगली से मसूड़ों की हल्की हल्की मालिश करना बच्चों में, तो
0: हाँ
1: इससे भी बहुत आराम मिलता है बच्चे को।
0: जी
1: दूसरी समस्या आती है बोटल केरीज, नर्सिंग बोटल केरीज के नाम से। जैसे
0: अच्छा
1: एक बहुत ही आम बात है कि बच्चे को दूध की बोतल मुंह में देके सुला देते हैं पेरेंट्स कई बार,
0: हाँ बिल्कुल सही है। बच्चा खुद सो
1: जैसे
0: जाता है ना, ऐसा
1: सो
0: लगता है कि
1: जाता
0: भाई वो सो रहा है, अगर उसको छेड़ दिया नींद से उठ जाएगा।
1: जी बिल्कुल, जैसे कई बार माँ भी कभी कोई काम में लगी हुई है तो वो बोतल देके बच्चे को सुला देते हैं, तो उससे क्या है कि बच्चा भी सोता रहता है और मुंह में बोतल रहती है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो दूध जो है वो पूरे टाइम दांतों की सतह पर लगा हुआ रहता है,
0: जी
1: इससे जो आगे के दांत होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूध के अंदर नेचुरल शुगर्स होती है, हम भी जब दूध देते हैं तो थोड़ा कभी चीनी मिला के देते हैं, तो
0: जी
1: जो शुगर्स होती है वो दांतों के ऊपर लग जाती है, और उससे ही शुगर जब लगती है तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो सबसे पहली सलाह तो ये है कि बच्चे को जब जैसे दूध खत्म हो जाए या जल्दी से जल्दी उसको मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करनी है।
0: बिल्कुल
1: दूध पिलाने के बाद में थोड़ा सा पानी पिलाना है। हाँ,
0: अच्छा। पानी
1: और
0: किस उम्र के बच्चे को, मतलब
1: कोई भी उम्र के बच्चे को आप पिला सकते हैं, पानी चम्मच से पिला सकते हैं, किसी भी तरीके से पिला सकते हैं।
0: 6 महीने से बड़ा बच्चा हो उसके बाद।
1: हाँ, 6 महीने
0: हाँ
1: से पहले जब आप दूध पिला रहे हैं बच्चे को बोतल से, बोतल के दूध के बाद में आपको पानी पिलाना है ताकि थोड़ा जो शुगर है वो डाइल्यूट हो जाए और पेट के अंदर चला जाए।
0: जी
1: दूसरा है कि जैसे मार्केट में गौच पीस मिलता है,
0: अच्छा
1: स्टरलाइज गौच पीस के नाम से कॉटन आता है,
0: जी
1: उसको थोड़ा सा उंगली पे लपेट के और फिर जैसे दूध पिलाने के बाद थोड़ा सा दांतों की सफाई करनी होती है,
0: जी
1: जिससे शुगर टिकी भी नहीं रहे और दांतों की सफाई भी हो जाए।
0: जी
1: अब कुछ आदतें ऐसी होती हैं बच्चों में जो हमें देखने में तो बहुत क्यूट लगती है, लेकिन वो आगे जाके बहुत नुकसान देती है।
0: अंगूठा
1: सबसे
0: चूसना
1: सबसे पहला अंगूठा चूसना। अगर
0: जी
1: बच्चा 4 से 5 साल की उम्र के बाद में भी लगातार अंगूठा चूसता है तो उसमें
0: जी
1: सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो सामने के दांत होते हैं ऊपर के,
0: विकृत हो जाते हैं।
1: वो बाहर की तरफ आते जाते हैं और
0: अच्छा
1: दांतों के बीच में गैप आ जाता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको बाइट की भी समस्या आएगी, वो ढंग से बाइट नहीं कर पाएगा, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये सबसे पहली समस्या होती है। अब इसका समाधान कई बार क्या होता है, पेरेंट्स पूछते हैं कि हम ऐसा

0: करें जो बच्चे छोड़ दे आदत, ज्यादातर
1: छोड़ दिया।
0: बच्चों को होती है सोते टाइम मुंह में अंगूठा डालने की। तो सबसे नेचुरल तरीका है जो हम हमारे घर में, अगर कोई एलोवेरा लगा हुआ है, मीठा वाला, कड़वा वाला नहीं,
1: जी
0: थोड़ा सा एलोवेरा उसके अंगूठे पे रगड़ लो। क्या होता है, 2-3 बार जब थोड़ा कड़वा महसूस होता है तो बच्चा अपने आप धीरे धीरे अंगूठा चूसना छोड़ देता है।
1: जी
0: एलोवेरा नुकसान भी नहीं रहता। कई बार पेरेंट्स मिर्च लगा देते हैं
1: मिर्च
0: अंगूठे में,
1: लगाते हैं बिल्कुल।
0: तो उससे क्या है कि एक तो बच्चा इरिटेट भी होगा, ठीक है, एक एक तरह
1: बिल्कुल
0: से मतलब उसके लिए पनिशमेंट होगी, तो
1: हाँ।
0: वो नहीं करना है। एलोवेरा सबसे अच्छा इलाज होता है, हमारे यहाँ पे बहुत उगता है घर में, सब लगा सकते हैं, थोड़ा
1: जी
0: सा अंगूठे पे रगड़ के और सुला दो तो बच्चा धीरे धीरे आदत छोड़ देता है।
1: जी
0: दूसरी समस्या होती है मुंह से सांस लेने की। कई बार आपने देखा हो तो बच्चे सोते टाइम मुंह खुला रखते हैं कि वो नाक से सांस नहीं ले पा रहे, इसलिए वो मुंह खुला रख के सांस लेते हैं। यदि बच्चा हमेशा मुंह खोलकर सोता है या दिन में भी मुंह से ही सांस ले रहा है, तो उससे क्या समस्या होती है कि चेहरा धीरे धीरे लंबा होना शुरू हो जाता है,
1: अच्छा
0: और ऊपर का जो जबड़ा होता है धीरे धीरे नैरो या संकरा होना शुरू हो जाता है, उससे
1: अच्छा
0: दांत भी टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा डेंटिस्ट के पास जाना है या फिर कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है। तो कई बार क्या होता है कि जो नाक जो होता है उसमें अंदर के बीच की जो हड्डी होती है वो टेढ़ी होती है, तो उसकी वजह से बच्चा सांस नहीं ले पाता ढंग से, तो उसका इलाज भी कम उम्र में पॉसिबल है और हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें भी।
1: जी
0: तीसरी समस्या आती है टंग थ्रस्टिंग जिसको बोलते हैं। से कुछ बच्चे क्या होता है, खाना निगलते समय जीभ को आगे धकेलते हैं,
1: अच्छा
0: तो उससे क्या है कि आगे के दांत फिर आगे खिसकना शुरू कर देते हैं,
1: अच्छा
0: उससे भी दांतों के बीच में गैप आ जाता है। ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है कि बच्चों के जो डेंटिस्ट होते हैं, पीडोडोंटिस्ट हम बोलते हैं उनको,
1: अच्छा
0: वो एक अप्लायंस बना देते हैं। वो अप्लायंस क्या करता है कि ऊपर के तालू पे लग जाता है, तो बच्चों की जो आदत है जीभ से दांत को ढकेलने की, वो पेसिफायर या जो अप्लायंस होता है वो उसको रोक लेता है। तो उससे क्या है कि दांतों के बीच में गैप आना और ये सब समस्याएं से कंट्रोल आ जाता
1: डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में कुछ सवाल थे तो
0: है। जी
1: मैं
0: जी
1: आपसे पूछना चाहती थी। पहली बात तो ये कि क्या ये ऐसा कुछ जैसे मिथ हमारे सोसाइटी में पाया जाता है, ऊपर के दांत पहले आने चाहिए, नीचे के छोटे बच्चों के दांत पहले आने चाहिए, नहीं तो कष्ट होता है, तो ये सब का कुछ साइंस है या सिर्फ मिथ है?
0: नहीं, ये सब मिथ है, क्योंकि सबसे पहले जो दांत आता है वो आपका लोअर इंसाइजर आता है। लोअर इंसाइजर मतलब कि नीचे के जबड़े का आगे वाला दांत,
1: हाँ बिल्कुल
0: सबसे
1: सही है।
0: पहले एक अप्ट वही होता है। फिर जैसे नीचे के 2 दांत आएंगे उसके बाद ऊपर के 2 दांत आते हैं।
1: कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि पहले ऊपर का दांत आ जाता है, तो बोलते हैं कि भाई नींबू का रस लगाओ, दांत लेट से लेट आए, ऊपर का
0: नहीं
1: दांत नहीं आना चाहिए, क्योंकि
0: नहीं ऐसा कुछ
1: एक्सेप्शंस
0: भी
1: आर
0: नहीं।
1: एल और ऑलवेज एवरीवेयर, तो इससे कुछ समस्या हो सकती है क्या?
0: नहीं, कोई समस्या नहीं होती। अगर पहले ऊपर वाला भी आ रहा है तो भी उससे समस्या कुछ भी नहीं है,
1: जी
0: लेकिन अमूमन 99%
1: हाँ
0: बच्चे नीचे का दांत ही पहले आएगा, फिर
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बाद ऊपर का दांत आता है। और अगर पहले ऊपर का भी आ रहा है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं, समस्या कुछ भी नहीं है।
1: बच्चों को
0: हमेशा
1: नींबू लगाना कि नहीं आए नहीं आए, तो ये सब
0: नींबू
1: मुझे
0: लगाने
1: लगता है
0: से,
1: असामान्य प्रक्रिया है, नहीं करें शायद।
0: नींबू लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और
1: अच्छा
0: नींबू में सिर्फ विटामिन सी और थोड़ा एसिडिक होता है, तो वो फायदा कुछ भी नहीं करेगा आपको,
1: जी
0: तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा
1: मन
0: आपको।
1: पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने मिथ क्लियर किया। एक और चीज है कि जैसे आपने बताया कि भाई जब बच्चे को मुंह में बॉटल देते हैं ना, तो दूध में जो मिल्क शुगर है उसकी वजह से भी रोज मुंह में रख के सोने से और मसूड़े साफ नहीं करने से तकलीफें उत्पन्न हो सकती हैं।
0: जी
1: तो ये तो हो गया अभी बड़े बच्चों का सिनेरियो, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने तक के, जो फुल्ली अपने माँ के दूध पे डिपेंडेंट है,
0: जी
1: तो वो भी अगर माँ का दूध पीते पीते सो रहे हैं या सो गए हैं और उनकी माँ सोते बच्चे को तो छेड़ के मुंह में नहीं उसकी सफाई करेगी मसूड़ों की,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: उससे कुछ नुकसान होगा या फिर उस वक्त भी जरूरी है कि हम बच्चों का ख्याल रखें?
0: देखिए, 6 महीने का जब बच्चा होता है, मोस्टली जो मदर्स होती है 1 साल तक ज्यादा से ज्यादा फीड करते हैं,
1: हाँ
0: तो 1 साल तक बहुत ही कम दांत आते हैं, जैसे आगे के कुछ 2-3 दांत आ गए, ऊपर के 2-3 दांत आ गए, नीचे के आ गए।
1: जी
0: तो एक तो क्या है कि हमें केयर बहुत कम करनी पड़ती है, सबसे पहले गम पैड्स होते हैं जो जो

0: मसूड़े होते हैं उसको हम गम पैड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के गम पैड्स ही आते हैं, तो लेकिन उसमें भी ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सफाई तो बराबर करनी ही है, भले माँ का दूध है तो क्या, और अगर ऊपरी ये गाय का दूध पिला रहे हैं तो क्या, सफाई हर उम्र के बच्चे में सफाई जरूरी है।
1: मतलब जब अगर बच्चा उठ गया नींद से, उसके बाद भी थोड़ा सा मुंह खोल के एक क्लीनिंग प्रोसेस
0: हाँ
1: स्टार्ट
0: क्लीनिंग
1: कर देना
0: प्रोसेस,
1: चाहिए। ये
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: सोचना चाहिए कि भाई अभी कौन से इसके दांत है
0: नहीं,
1: ना।
0: क्लीनिंग प्रोसेस आपको शुरू से ही मेंटेन रखना पड़ेगा।
1: जी, एक बात और पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि भाई आप जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं बॉटल से या किसी भी तरह से, ऊपर थोड़ा
0: जी
1: सा पानी पिला दें ताकि
0: जी
1: वो निकल जाए, तो क्या 6 महीने से छोटे बच्चे को माँ के दूध के बाद भी पानी पिलाना चाहिए?
0: जी पानी पिला सकते हैं, पानी का कोई डॉक्टर मना नहीं करता।
1: अच्छा।
0: हाँ पानी आप थोड़ा सा चम्मच से या किसी भी तरीके से उसको थोड़ा सा मुंह में डाल सकते हैं पानी।
1: जी
0: हाँ
1: जी और
0: कुछ
1: बॉटल
0: भी
1: की जहां तक
0: कर
1: बात है, तो कई बार ये माना जाता है कि भाई जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, साथ साथ उनके मुंह के जो दांतों की पोजीशन एंड सीक्वेंस एंड ऑल ब्यूटी वो भी डिस्टर्ब होती है। तो एज अ डॉक्टर, एज अ डेंटिस्ट, आप बॉटल से दूध बच्चे पिए ना पिए क्या ख्याल रखें, या बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, आप क्या सजेशन देंगे?
0: देखो, कुछ बच्चों को आदत पड़ जाती है बोतल की।
1: जी
0: सबसे पहला तो जब भी बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस बोतल
1: जी
0: को यूज करने के बाद, धोने के बाद में एक बार उबले हुए पानी में डालना है, जिससे उसके अंदर जो लगे हुए दूध है या शुगर है वो सही खत्म हो जाए। दूसरी
1: बिल्कुल
0: बात यह है कि हमें जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बोतल छुड़वाना ही अच्छा रहता है। चम्मच कटोरी से भी दूध पिला सकते हैं, वो ज्यादा ठीक रहता है।
1: जी
0: क्योंकि बॉटल या पेसिफायर भी आते हैं आजकल। पेसिफायर क्या होता है, जिसमें कई बार शहद डाल के बच्चे के मुंह में रख देते हैं,
1: हाँ बिल्कुल आते
0: वो
1: हैं।
0: चूसते रहते हैं, जिससे क्या है कि उनको मीठा मीठा स्वाद भी आता है और वो बच्चा क्या है कि रोता नहीं है, या मुंह के अंदर रखा हुआ है तो ठीक है। लेकिन ये सब चीजें जितना जल्दी हो सकता है उतना छुड़वाना ही बेहतर है।
1: शुगर भी आखे तो शहद भी मीठा ही है।
0: मीठा ही है, अल्टीमेटली शुगर डैमेज ही करेगा बॉडी को। और जितना हो सकता है, मैं तो मेरी तो यही सलाह रहती है कि 6 साल के बच्चे से पहले तक तो चॉकलेट्स, बिस्किट्स और शहद या जो भी मीठा है, एक्सेसिव शुगर अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि अगर बचपन से ही जिन बच्चों को आदत लग जाती है शुगर की, उनको आगे जाके 50 साल 60 साल की उम्र में डायबिटीज होना स्वाभाविक है।
1: बहुत बड़ी बात बताई डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जब भी कोई छोटा बच्चा दिखेगा, चॉकलेट एक प्रेम प्रदर्शित करने का सबसे कॉमन तरीका है,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: हम
0: है।
1: किसी को समझा भी नहीं सकते। तो आप जैसे बोल रहे हो 6 साल तक बच्चे, जबकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आजकल तो बड़ा फैशन है कि 6 मंथ्स का बच्चा हो गया तो उसका हाफ केक कट होगा, 1 साल के बच्चे का केक कट होगा,
0: कट
1: एंड
0: होगा
1: जितने भी फैमिली मेंबर्स आएंगे वो नहीं जानते कि उस केक की जो आइसिंग है उसमें आइसिंग शुगर, उसमें शुगर है, उसमें बटर फ्रॉस्टिंग है, जो भी है वो मीठा है, और वो बच्चे को उंगलियां ले लेके चटाते जाते हैं, उसको क्रीम खूब खिलाते हैं। तो आप सोचिए, अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं तो ये तो बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है।
0: अब ये इन एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं कि भारत को डायबिटीज का कैपिटल क्यों बोलते हैं।
1: ओके
0: क्योंकि ये ट्रेंड हमने एक तो वेस्टर्न कल्चर से लिया,
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया जी
0: केक कटिंग का, और ये अब जब हमारे रोजमर्रा में आ गया है तो ये छूट भी नहीं रहा है। तो ये एक तो सबसे खराब आदत, शुगर इंटेक्स बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी।
1: शुगर मिनिमम कर देना चाहिए जितना
0: जी बिल्कुल
1: जरूरत हो, और छोटे बच्चों के लिए तो जिसे हम कहते प्रतिबंधित कर देना चाहिए स्कूल्स में एंड ऑल, कि
0: प्रतिबंध
1: चॉकलेट्स
0: कर देना चाहिए।
1: हम खुद ही दे रहे हैं बच्चों को। तो
0: बिल्कुल, कभी भी क्या होता है कि आज भी कई बार किसी के घर हम मिलने जाते हैं तो सबसे पहले क्या, बच्चों के लिए कुछ लेके जाना है तो एक डेरी मिल्क ले ली, एक किटकैट ले ली,
1: हाँ
0: तो ये ट्रेंड बन गया है।
1: ये
0: तो
1: तो है
0: इसको
1: डॉक्टर साहब। बिस्किट, जब आपने चॉकलेट की बात बोली है, तो अगर हम चॉकलेट का किसी को मना करते हैं तो वो चॉकलेट फीलिंग वाले बिस्किट्स देते हैं, तो मुझे
0: बिस्किट साथ,
1: लगता है दे आर मोर डेंजरस, क्योंकि उसमें बिस्किट की
0: अल्टीमेटली
1: भी
0: हम
1: बुराइयां आ गई।
0: शुगर को ही प्रमोट कर रहे हैं हर तरीके से।
1: सही है
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है।
1: जी। अब अगर
0: और
1: आप कंटिन्यू करें आगे
0: जी
1: उम्र के लिए, जी बहुत अच्छी
0: अब
1: जानकारी दी आपने।
0: अगला जो एज ग्रुप मैं लूंगा, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए लूंगा, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं।
1: जी
0: इस उम्र में।

0: सबसे ज्यादा समस्याएं देखी जाती है कैविटीज की, जो हमने बात करी, चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट, मीठे जैसे फ्रूटी हो गई या माजा हो गई, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। अब इसमें चलो हमने खा भी लिया, पी भी लिया, कोई बात नहीं। अब दिक्कत कहाँ आती है, जब हमने खा लिया और हम सो गए, रात को ब्रश नहीं किया, तो वो जो चॉकलेट्स होते हैं, कैरेमल होता है, वो दांतों के ऊपर चिपक जाता है। और वो दांतों के ऊपर चिपक गया मतलब आप मान के चलिए कि वहां पे बैक्टीरियाज की अब पार्टी शुरू हो चुकी है। वो इतने इतना एसिड रिलीज करते हैं दांत के ऊपर कि दांतों में धीरे धीरे कैविटीज बननी शुरू हो जाती है। और दांतों में तीन परत होती है, सबसे पहली होती है इनेमल, फिर डेंटिन, और फिर होती है पल्प। इनेमल तक भी अगर डैमेज होता है तो उसको हम रोक सकते हैं, डेंटिन तक भी डैमेज है तो उसको फिलिंग के माध्यम से हम रोक सकते हैं, लेकिन पल्प तक अगर पहुंच जाता है तो फिर उसमें बहुत ही पेन होता है एक तो बच्चे को, और बड़ा ही पेनफुल प्रोसीजर होता है रूट कैनाल बच्चों के लिए। हालांकि सब लोकल एनेस्थीसिया वगैरह सब आ गया है,
1: ना,
0: वो
1: पर
0: लगा के
1: फिर
0: हम
1: भी
0: कर सकते हैं,
1: एक सुई
0: लेकिन
1: भी लगना मुश्किल तो बच्चे के लिए होता ही है।
0: बस कई बार बच्चे को ऑपरेट कर लेते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, तो अल्टीमेटली भुगतना पेरेंट्स को और बच्चे को ही है।
1: सही कहा।
0: तो इसको सबसे अच्छा तरीका है, अगर बच्चे को किसी बच्चे को आदत भी है इन चीजों की, तो उसको रात को ब्रशिंग की हैबिट डलाना चाहिए। रात को ब्रश करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और ऐसा टूथपेस्ट लेना है जो एंटी कैविटीज, बहुत मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी मेडिकल पे जाके बोलो कि आपको मिल जाएगा, इजीली मिल
1: जी
0: जाते हैं बच्चों के लिए अलग से।
1: जी
0: मैं किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड पे फोकस नहीं कर
1: हाँ हाँ
0: सकता
1: ब्रांड पे हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी।
0: जी, तो उसको जैसे भी आप रात को ब्रश करके सोएंगे तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, वहां पे जो भी गंदगी चॉकलेट्स रिमेनिंग थी वो हट गई वहां से, तो हम सिक्योर हो गए कि चलो ठीक है, खा भी लिया तो कोई बात नहीं, हमने एटलीस्ट साफ सफाई रख ली, तो इससे हम कैविटीज को रोक सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: दूसरी जो जैसलमेर जिले की, मैं एक समस्या के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा, उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस।
1: हाँ, बहुत कॉमन है
0: तो फ्लोरोसिस क्या होता है, फ्लोरोसिस एक मिनरल है, फ्लोराइड मिनरल होता है,
1: जी।
0: तो जो अगर शरीर में कम भी है तो भी दिक्कत है और ज्यादा है तो भी दिक्कत है। तो इसकी जो मात्रा होती है 0.7 से 1.2 ppm पार्ट्स पर मिलियन जिसको बोलते हैं, ये सबसे सुरक्षित और लाभकारी होती है। अगर इससे कम है तो बच्चों में या बड़ों में कैविटीज होगी, अगर इससे ज्यादा है तो फ्लोरोसिस होता है। अब फ्लोरोसिस होने पे, फ्लोरोसिस का असर सिर्फ दांतों पे नहीं दिखता, हड्डियों पे भी दिखता है, हड्डियां कमजोर होना, सबसे पहले लक्षण जो है वो दांतों पे दिख जाएंगे, सफेद धब्बे होना, पीले या भूरे निशान होना, दांतों की चमक कम होना, और बहुत ज्यादा अगर फ्लोरोसिस हो जाता है तो उससे दांत कमजोर हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, कैविटीज हो जाती है। तो इससे बचाव के क्या क्या उपचार हैं,
1: जी
0: सबसे पहले तो हमें घर में पानी की जांच कराओ,
1: अच्छा
0: पानी हमारा डिफ्लोरिडेटेड आना चाहिए। डिफ्लोरिडेटेड अब हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं, डिफ्लोरिडेटेड पानी देना सबसे पहला काम तो सरकार की जिम्मेदारी होती है।
1: हाँ
0: दूसरा, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम आरओ का पानी पिए।
1: हाँ
0: आरओ का पानी पीना है, उसमें भी जो जो आरओ कंपनी से जो भी टेक्नीशियन आता है उसको ये बताना है कि हमारा टीडीएस पानी का 100 तक आना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कम अगर आ रहा है तो हमारे काम का नहीं है पानी। 100 या 150 के बीच में अगर टीडीएस है तो उसमें क्या है कि सब मिनरल्स भी मिल जाते हैं
1: जी
0: और फ्लोरोसिस से भी हम बचाव कर सकते हैं।
1: जी
0: अब अगर फ्लोरोसिस हो गया तो उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। डेंटिस्ट्री में अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, जैसे दांतों की सफाई होती है, कॉम्पोजिट बॉन्डिंग भी होती है जिससे दांतों के ऊपर सफेद कलर की परत लगा देते हैं,
1: जी
0: जिससे क्या है कि दांत में सफेद जो लुक है दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। वीनियर्स होते हैं, कैपिंग होती है, तो इलाज अलग अलग इलाज उपलब्ध है। तो जब भी फ्लोरोसिस होता है किसी को तो वो दंत चिकित्सक के पास जाके अपना इलाज करवा सकता है।
1: जी
0: अब मैं थोड़ा नेक्स्ट एज ग्रुप की तरफ बात करूंगा, जो होती है
1: किशोरावस्था
0: 12 से 18 वर्ष की, किशोर
1: कह सकते हैं। हाँ
0: किशोरावस्था या टीनेज बोल सकते हैं हम। तो ये उम्र जो होती है इसमें सबसे ज्यादा बच्चे अपनी स्माइल को लेके कॉन्शियस होते हैं,

0: वो सजग होने लग जाते हैं कि नहीं, हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, हमारे दांत आगे हो रहे हैं, अब मुझे ठीक करवाने हैं। तो जो टेढ़े मेढ़े दांत, सबसे ज्यादा समस्या टेढ़े मेढ़े दांतों की होती है,
1: जी
0: जिसमें आगे निकले हुए दांत है, दांतों में गैप हो रहा है, भीड़ भाड़ वाले दांत, मतलब एक के ऊपर एक दांत आ गया है। तो इसमें जो इलाज होता है, इलाज पॉसिबल है इसमें, सबसे पहला तो आपने देखा होगा कि कई बच्चों के ब्रेसेस लगे हुए होते हैं।
1: हाँ
0: तो ब्रेसेस एक तरीका है। आजकल एक इसका भी मॉडिफाइड वर्जन आ गया है, या जिसको
1: जी
0: बोलते हैं अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको बोलते हैं अलाइनर्स।
1: अच्छा
0: अलाइनर्स की थोड़ी सी मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि
1: जी
0: सबसे पहली चीज तो ये सबसे कंफर्टेबल ट्रीटमेंट है अलाइनर्स। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट प्लेट्स बन के आती है, वो मरीज के दांतों के हिसाब से ही बन के आएगी। तो जो अलाइनर्स पहनते हैं बच्चे, सबसे पहली चीज तो उसमें डाइट रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होता कि आप फ्रूट्स भी चबा सकते हो, कड़क चीजें खा सकते हो, पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो, ये सब चीजें आप ब्रेसेस में नहीं खा सकते। जबकि अलाइनर्स में, अलाइनर्स आपने निकाले, आपने खाया, ब्रश किया, अलाइनर्स को साफ किया, दोबारा अलाइनर्स पहन लिया,
1: जी
0: सबसे कंफर्टेबल ट्रीटमेंट होता है अलाइनर्स का, और ब्रेसेस के मुकाबले जल्दी भी होता है। तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, अगर टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज के लिए कोई इलाज है, तो वो है क्लियर अलाइनर्स।
1: जी
0: अब मैं नेक्स्ट एज ग्रुप पे आता हूँ, जो 18 से लेके 50 वर्ष में है, जिसमें युवा भी आ जाते हैं, मध्यम आयु वर्ग के भी आ जाते हैं, थोड़े से बुजुर्ग भी जो होने वाले वो भी आ जाते हैं।
1: जी
0: इसमें क्या होता है कि नौकरी, व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में लोग दांतों को अक्सर नजरअंदाज कर लेते हैं,
1: जी हाँ
0: से बिजी लाइफ है, क्लीनिंग नहीं हो पा रही ढंग से, जल्दी जल्दी ब्रश कर लिया हमने और चले गए हम ऑफिस, या काम करने चले गए, या दुकान चले गए। तो ऐसी इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा समस्या आती है कैविटीज की। अब कैविटीज होने के बाद में वही बात हो गई कि जितना जल्दी हम उसको ठीक करेंगे उतना जल्दी अच्छा। तो सबसे पहली चीज तो जैसे ही अगर आपको मुंह में कोई भी दांतों के ऊपर काला धब्बा नजर आता है कि ब्लैकिश हो रहा है दांत, कहीं पे दांत में खाना फंस रहा है, तो
1: जी
0: जल्दी जल्दी आप डेंटिस्ट के पास जाइए।
1: जी
0: उसका डेंटिस्ट हमेशा पहले एक्सरे करते हैं, एक्सरे में पता चलता है कि अभी तक कैविटी बहुत ज्यादा डीप नहीं है, तो उसको हम फिलिंग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं।
1: जी
0: अक्सर दिक्कत जब ही आती है जब हम देरी करते हैं। अच्छा, इस एज ग्रुप में एक सबसे ज्यादा समस्या आती है अकल दाढ़ की।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी कि ये एक बहुत बड़ी और सामान्य कॉमन समस्या है।
0: अकल दाढ़ जो होती है अमूमन 18 से 28 वर्ष के बीच में आती है। अब जैसे जैसे हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, वैसे वैसे क्या होता है कि इंसान के जबड़े की साइज जो है वो धीरे धीरे छोटी हो रही है। अब विजडम टूथ जो है वो धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ जा रहा है, जिसका आने वाले टाइम में कोई काम नहीं होगा। तो जैसे जैसे जबड़े की साइज छोटी हो रही है, वैसे वैसे अक्कल दाढ़ को आने की जगह नहीं मिलती। जैसे एक बस है, अगर आप मान लो उसमें बस में 14 जनों की सीट है
1: जी
0: और हम 16 जने भरे, 2 एक्स्ट्रा हम भरे, तो वो जब या तो बाकी वालों को आगे पीछे कर देंगे, या वो इस तरीके से होंगे कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा।
1: जी
0: तो इसी तरीके से जब अक्कल दाढ़ आती है, अगर वो सीधी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो टेढ़ी मेढ़ी आती है, तब वो आगे वाले सेकंड मोलर्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर उसकी वजह से दर्द होना, सूजन आना मुंह में, मुंह कम खुलना। तो ये सब समस्याएं के ये सब आती है जब अक्कल दाढ़ समस्या करती है। तो अब इसमें क्या होता है कि कई बार मरीज आता है कि डॉक्टर साहब मेरे अक्कल दाढ़ सीधी आ गई है, लेकिन इसको निकलवाना जरूरी है क्या? तो
1: अच्छा
0: अक्कल दाढ़ निकलवाना तभी जरूरी होता है जब तक उसके कारण कोई दर्द नहीं हो रहा। अगर उसके कारण कोई दर्द नहीं है तो हम अक्कल दाढ़ को नहीं छेड़ते, नहीं निकालते, लेकिन अगर उसके कारण दर्द है और वो आगे वाले दांत को भी नुकसान पहुंचा रही है, या उसकी वजह से खाना फंस रहा है, मुंह में बदबू आ रही है, तब उसका सर्जरी के माध्यम से उस अक्कल दाढ़ को निकालना जरूरी होता
1: जी
0: है। दूसरी, जो औरतों में जो डिजीजेस ज्यादा देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं पायरिया या मसूड़ों की बीमारी, सबसे ज्यादा आम होता है ये 40 के बाद में देखना शुरू होता है, जब जैसे जैसे फीमेल्स में।

0: मेनोपॉज की तरफ जाते हैं, तब जैसे उस टाइम पे क्या होता है कि हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत ज्यादा होता है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से मुंह के अंदर मसूड़ों से खून आना, ये बहुत आम समस्या होती है। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं, इसका भी इलाज होता है। सबसे पहली चीज तो आप, जैसे ही आपको लग रहा है तो मसूड़ों से खून आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। वो एक प्रोसीजर होता है स्केलिंग,
1: अच्छा
0: स्केलिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि मसूड़ों के अंदर जो भी गंदगी फंस रही है वो साफ हो जाती है। उसके बाद में कुछ मेडिसिन्स, कुछ टूथपेस्ट ऐसे आते हैं जिससे जो ब्लीडिंग होना या मसूड़ों में सूजन आना वो भी कम कर सकते हैं।
1: जी
0: घर में हम क्या कर सकते हैं, घरेलू इलाज, अगर कोई मेरे से पूछता है कि डॉक्टर साहब हम घर में ऐसा क्या करें जो समस्या ही नहीं हो, तो सबसे बड़ी चीज है, जब जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद में थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, उसमें नमक डालना है और उससे अच्छे से वॉश करना है, कुल्ला करना है,
1: गार्गल
0: गार्गल्स करना है, जिससे क्या होता है कि जो नमक का पानी होता है वो एक तरीके से माइल्ड एंटीबायोटिक का काम करता है।
1: अच्छा, ये कौन सा नमक लें, सेंधा नमक या फिर सामान्य नमक?
0: सामान्य नमक ले सकते हैं, जो आयोडीन वाला नमक होता है ले
1: हाँ
0: सकते हैं, कोई समस्या नहीं
1: ठीक
0: है उसमें। तो उससे क्या, एक तो नुकसान भी नहीं करती, एंटीबायोटिक्स अलग से हम लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं, ये घरेलू उपचार है, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, मसूड़ों, जब हम ब्रश करते हैं उसके बाद में मसूड़ों की थोड़ी सी मालिश बहुत जरूरी है, लास्ट में ब्रश करने के बाद में एक बार मसूड़ों की मालिश करना चाहिए, जिससे मसूड़े कमजोर नहीं होते। तीसरा जो होता है, डाइट में हम ऐसा क्या लें, खाने में हम ऐसा क्या लें जिससे
1: जी।
0: कि ये वाली समस्या नहीं हो। विटामिन सी जिन जिन फ्रूट्स में होता है, जैसे कि संतरा है और मौसमी का जूस है, आंवला है, जितना ज्यादा विटामिन सी बॉडी को मिलेगा उतने ही मसूड़े मजबूत रहेंगे। तो ये डाइट में इंक्लूड करने से भी हमें मसूड़ों की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अब ये तो हो गई फीमेल्स में जो समस्या दिखती है, अब मेल्स में जो समस्या दिखती है मैं उसके बारे में बात करूंगा। वो अक्सर क्या होता है कि आदतन समस्याएं होती है, वो बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से नहीं हो रहा है, वो आदत है। आदत जैसे कि तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट का पान, तो इन सब में क्या होता है कि आपको भी पता है जो पैकेट बिक रहा है उसके ऊपर साफ शब्दों में वार्निंग
1: लिखा है,
0: भी लिखी है,
1: सब कुछ लिखा है।
0: सब कुछ लिखा होता है, लेकिन फिर भी आदतें ऐसी है कि वो नहीं छूटती।
1: जी।
0: अब क्या होता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई तंबाकू खा रहा है वो सेल्फ इवेल्युएट करे, सबसे पहले खुद की जांच करे कि अगर उसके मुंह में कोई भी सफेद या लाल धब्बा दिख रहा है, या फिर मिर्च मसाला खाने से बहुत ज्यादा जलन हो रही है मुंह
1: जी
0: में, या मुंह कम खुल रहा है, तो सबसे पहले वो डेंटिस्ट के पास जाके अपनी जांच कराए,
1: डॉक्टर साहब, एक
0: क्योंकि
1: बात आपको बोलना चाहूंगी कि ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये तंबाकू और ये सब चीजें इतनी विस्तृत है कि मैं चाहती हूं कि एक हम अलग से पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम इसी टॉपिक पे करें, क्योंकि अभी हमारे पास जो समय की सीमा है, तो हम नहीं चाहते कि आप इसका थोड़ा सा ज्ञान हमारे श्रोताओं को दें। ये
0: जी।
1: चीज पूरी डिटेल में, जैसे आपने बच्चों का और महिलाओं का बताया, एक पूरा प्रोग्राम ही हम जल्दी ही इस चीज के ऊपर लाएंगे। तो श्रोताओं, इस टॉपिक पे हम एक डॉक्टर साहब के साथ अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखेंगे और अगले प्रोग्राम में, अगले आरोग्यम के अंक में, इनसे इसी विषय में पूरी डिटेल में बात करेंगे, ताकि हम लोग ज्यादा लाभान्वित हो सके। तो डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की और बच्चों के बारे में और महिलाओं के बारे में इतना बेहतरीन से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टॉपिक को हम आपको रोकेंगे नहीं, अभी के लिए थोड़ा विश्राम लेंगे और अगले प्रोग्राम में फिर आपसे बात करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो श्रोताओं, बने रहिएगा कार्यक्रम में। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।
2: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन शेडी चैनल है। दोपहर के 3 बजे हैं, प्रस्तुत है विविध भारती के कार्यक्रम।

0: Daqui, Sarreli. Daqui, Sarreli. कार्यक्रम सखी सहेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ है
1: सोनाली पाठक। तो आप सभी को सोनाली पाठक का
0: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। क्या कर रही हो सोनाली?
1: बैठी हुई हूं आपके सामने।
0: भाई मेरे सामने तो बैठी हो, इन दिनों क्या कर रही हो? मैंने ये जानना चाहा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है।
1: बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और बहुत खूबसूरती के साथ आप सामने बैठी हुई हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है, एक सुखद अनुभूति मिल रही है।
0: अरे वाह, यही तो होना चाहिए कि जब दो दिल मिलते हैं, दो इंसान मिलते हैं, दो दिमाग मिलते हैं तो सुखद अनुभव होना चाहिए
1: जी।
0: और ये हमारी जिंदगी में होता भी है सोनाली। हमारे श्रोता भी इस बात को कहते हैं, जब हम अपने श्रोताओं के लिए आते हैं, उनसे कार्यक्रम के जरिए मिलते हैं तो कितना सुखद एहसास होता है हमें।
1: और हम है ना कल्पनाओं के माध्यम से महसूस भी करते हैं ना मंदाकिनी जी।
0: हाँ?
1: कि हमारे बहुत सारी सखियां बैठी हुई होगी, श्रोतागण बैठे हुए होंगे और वो क्या कर रहे होंगे,
0: हमें सुन रहे होंगे,
1: हमें सुन रहे हैं,
0: अचार भी डाल रहे हैं।
1: हमारी कुछ सखियां जो है अचार भी डाल रही होगी कि चलिए इधर रेडियो भी ऑन है किचन में और इधर अचार बन रहा है, क्योंकि इन दिनों तो घर में अचार और मुरब्बे बनते ही हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत जरूरी भी होता है घर के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या हमारे घर की जो महिलाएं हैं, पुरुष भी जब ऑफिस जाते हैं तो अचार और परौठा एक ऐसा भोजन है जो लगभग हर लोग लेके जाते हैं अपनी टिफिन।
1: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी थोड़ी सी फीकी बन गई है तो उसमें जो अचार है ना वो उसका स्वाद बहुत बढ़ा देता है खाने का।
0: और कई बार ये भी होता है कि जब घर की गृहिणियां सब्जी बनाने में थोड़ी सी आलस बरत लेती है ना तो दाल और अचार से काम हमारे घर के पुरुष चला लेते हैं, पता
1: या फिर कभी सब्जी कम पड़ गई तब भी अचार से काम चला सकते हैं।
0: और या प्याज का सलाद खाना हो ना उसमें भी अचार डालकर
1: खा सकते हैं,
0: मस्त।
1: और साथ में मुरब्बे, वो मीठे मीठे मुरब्बे तो बहुत है, उसमें आम का मुरब्बा बनता है, फिर करौंदे का मुरब्बा बनता है, आंवले का मुरब्बा बनता है, अलग अलग तरह के मुरब्बे बनते हैं जो भी हर घर की शान होती
0: है। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम व्यंजनों पर आएंगे ना तो हमारे श्रोता या हमारी सखियां और सखा तब तक अचार और मुरब्बे पर अपनी जो है रेसिपी लिखकर भेज चुकी हूँ
1: कि आपके घर में किस तरह का मुरब्बा या किस तरह का अचार बनता है। कोई मीठा अचार बनाते हैं, कोई तीखा बनाते हैं, कोई कद्दूकस करके अचार बनाते हैं, तो कौन से तरह का अचार आपके घर में पसंद किया जाता है उस पर हमें लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे क्या और विषय है आज की?
1: शब्द हमारा विचार आपके, इसमें विषय है संयम।
0: संयम
1: से कहना बहुत आसान है और उसे अपनाना बहुत ही मुश्किल
0: है। बहुत मुश्किल है। और वैसे हमारे श्रोताओं ने संयम पर बहुत कुछ लिखकर भेजा भी है, लेकिन हम तो ये जानना चाहते हैं सोनाली हमारे सखाओं से, हमारे सखियों से कि जब आपके जीवन में संयम बरतने की बारी आई तो आपने कहाँ कहाँ

0: हाँ संयम खो दिया था
1: या फिर झुंझला उठे।
0: वही बात की मसलन आपको बाजार जाना है, किसी पार्टी में जाना है और आपकी धर्म पत्नी ने तैयार होने में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और आप झुंझला गए,
1: संयम टूट गया
0: बिल्कुल। या फिर ट्रैफिक में जब आप
1: फंस गए हो और सामने वाली, आपको पता ही नहीं है कि सामने की यानी दो गाड़ियां छोड़ के उसके आगे की गाड़ी बंद पड़ गई है और आप जोर जोर से हॉर्न देते जा रहे हैं, ये क्यों नहीं चला रहा है, क्यों नहीं चला रहा है, क्या हो रहा है।
0: और दुनिया भर की बातें हमारे मन से निकलती है उस वक्त, है ना, जब हम फंस जाते हैं तो हम धैर्य खो देते हैं, संयम खो देते हैं ना। और भी बहुत से ऐसे विषय हैं जहां हम अपना आपा खो देते हैं, तो हमारे श्रोताओं से हम चाहते हैं वो लिखें, संयम क्या है। संयम तो सबको पता है क्या है, लेकिन संयम की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें ये बताना है कि हमने जिंदगी में कब कब संयम रखा और ये कितना काम आया
1: और कब कब खो दिया संयम,
0: वो तो बताना ही क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी
1: दोनों भी है
0: ना। हाँ।
1: और साड़ियों का संसार, इसमें हम इलकल साड़ी कर्नाटक के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे कुछ श्रोताओं ने लिखकर भी भेजी है,
0: बहुत अच्छी साड़ी होती है इलकल साड़ी,
1: बहुत नरम मुलायम बहुत सुंदर।
0: तो सोनाली इस बार हम जब बाजार जाएंगे ना तो ये साड़ी खरीद कर लाएंगे,
1: बिल्कुल खरीदेंगे, इतने सुंदर कलर होते हैं इलकल साड़ी के,
0: क्या बात है। तो और देखिए सोशल मीडिया पर वाद विवाद और समय की बर्बादी हम बहुत करते हैं,
1: बहुत ही ज्यादा, यानी हमने सोशल मीडिया ऐप खोले कि उसमें कोई एक विषय पे या कोई एक रील पे इतने लोग लिखते हैं उसमें घंटों बाद, और फिर लोग वो मैसेज भी पढ़ते हैं किसने क्या लिखा किसने क्या लिखा, उसपे भी 250-300 हजारों के लाइक्स होते हैं। तो ये समय की बर्बादी ही,
0: बिल्कुल मिलता कुछ नहीं है, है ना, लेकिन हम अपने विचार वहां थोप देते हैं और अनावश्यक कई बार क्या होता है, साधारण सी न्यूज होती है उसको हम बहुत बड़ी बना देते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, या फिर कोई बहुत बहुत ही सेंसिटिव घटना हो गई है किसी की जिंदगी में, उस पर हम अपने विचार अनाप शनाप थोप देते हैं।
1: और कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी, आपस में लड़ाई भी हो जाती है लोगों की, ये तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये तो ऐसा है वैसा है, और उसमें हमारा बहुत सारा वक्त
0: समय और सोची दिमागी हालत कैसी हो जाती है उसके बाद,
1: अगर हमें क्रोध आ गया तो हम खुद का बहुत नुकसान कर लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो सोशल मीडिया पे लिखते वक्त पहले तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, फिर ये भी उम्मीद कर लेनी चाहिए कि किस तरह के विचार आने वाले हैं। इन सब में अपना समय बर्बाद करने की बजाय हम कुछ क्रिएटिव लिखें, हाँ कुछ मुद्दों पर आप आवाज उठाएं, लेकिन उस आवाज का असर दूर तक होना चाहिए,
1: और बस मैसेज किया और छोड़ दिया, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है
0: कि किसने क्या लिखा और किसने लाइक किया किसने नहीं किया, हम नाराज हो जाते हैं। पर अब हमारे श्रोता नाराज होने वाले हैं अगर हमने गाना नहीं सुनाया,
1: सुनवा देते हैं।

0: तो चलिए दरिया में फेंक दी हमने चाबी, पर हमने अपनी अलमारी की चाबी संभाल के रखना है जिसमें बहुत सारी साड़ियां होती।
1: हाँ वही तो मैं कहने वाली थी कि दरिया में चाबी फेंक दोगे तो हम अपनी साड़ियां और अपने कपड़े कैसे निकालेंगे भाई।
0: भाई हमारी जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग तरह की अलग अलग प्रांत की साड़ियां होती है। तो कर्नाटक की साड़ी इल्कल अगर आपने नहीं खरीदी है तो आपको जरूर खरीदना
1: खरीदनी
0: है,
1: पड़ेगी है ना।
0: बहुत सुंदर साड़ियां होती है। और भारत की संस्कृति में साड़ियों का वैसे विशेष स्थान होता है। हर प्रदेश की साड़ी अपने रंग बुनाई और परंपरा के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, और इन्हीं में से एक है इल्कल साड़ी जो कर्नाटक राज्य की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है। ये साड़ी अपनी सुंदर बनावट, पारंपरिक रंगों और अनोखी बुनाई के लिए जानी जाती है।
1: हाँ बिल्कुल सोनाली, और इल्कल साड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक के बागलकोट जिले के इल्कल नगर से है, और इसी स्थान के नाम पर इसका नाम इल्कल साड़ी पड़ा। और ये कर्नाटक की ग्रामीण संस्कृति और हथकरघा परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: और इल्कल में साड़ी बुनने की परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। स्थानीय बुनकर परिवारों ने इस कला को वर्षों की मेहनत और अनुभव से जीवित रखा है। पहले ये साड़ियां विशेष रूप से महिलाओं के पारंपरिक पहनावे का हिस्सा थी, लेकिन आज देश विदेश में भी इनकी मांग
1: हो गई है। बिल्कुल सही कहा, और इल्कल साड़ी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अनोखी बुनाई तकनीक। इसमें साड़ी के जो मुख्य भाग है बॉर्डर है और पल्लू को एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, और पारंपरिक रूप से इसमें टोपे देने तकनीक का उपयोग किया जाता है जो इसे अन्य साड़ियों से अलग बनाती है।
0: और पारंपरिक इल्कल साड़ियों में सूती और रेशमी धागों का सुंदर मेल देखने को मिलता है। साड़ी का मुख्य भाग अक्सर सूती धागों से और पल्लू और बॉर्डर रेशमी धागों से बनाया जाता है, और इसकी हल्की और आरामदायक बनावट इसे रोजमर्रा के पहनावे के लिए

0: हैं और इस काम में अनेक बुनकर परिवारों की आजीविका भी जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इलकल साड़ी जो है कर्नाटक की पहचान है और उसकी परंपरा का प्रतीक है। विवाह के अवसर हो, त्योहार हो या विशेष अवसर हो, उसमें पहनने की परंपरा रही है। और ये साड़ी जो है भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता और सादगी को भी दर्शाती है।
0: और आज इलकल साड़ी पारंपरिक रूप से कई नए डिजाइनों में भी उपलब्ध है। आधुनिक रंगों और नए पैटर्न के कारण युवा पीढ़ी में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और ये भारतीय हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे ग्रामीण तबके के लोग हैं उन्हें उनकी जो है
0: घर चल सके,
1: उनको एक आजीविका का साधन मिल सके। और यह साड़ी केवल पहनने का वस्त्र नहीं, जैसा भी आपने कहा था कि कर्नाटक की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और बुनकरों के कौशल की कहानी मानी जाती है और उसके हर धागे में सोनाली परंपरा की गर्माहट है और कलाकारों के हाथों की मेहनत छिपी होती है। और ये भारतीय हथकरघा विरासत का एक सुंदर उदाहरण है जिसे सहेजना हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है।
0: ये बिल्कुल हमें जिम्मेदारी हम महिलाओं को उठाना चाहिए कि जब भी कभी कर्नाटक घूमने गए आप तो आपको इलकल साड़ी जरूर खरीदना चाहिए। और फिर और क्या होता है ना मंदाकिनी जी, हम साड़ियां तो खरीद ले आते लेकिन उसे पहनते नहीं है।
1: हाँ।
0: तो साड़ियों को पहनना भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो या फिर कोई पार्टी हो तो साड़ियां जरूर महिलाओं को पहनना चाहिए। अब क्या होता है कि महिलाओं का सर के भी वक्त बहुत
1: ज्यादा लगता है,
0: पर थोड़ी तैयारी हमने थोड़ी एक दो घंटे पहले तैयारी करके रख ली कि पहले से हमने साड़ी अच्छे से प्रेस कर ली, ब्लाउज प्रेस कर लिया, उसकी जो उसमें पहनने वाले जो गहने वहने सब निकाल के रखे तो हम आराम से पहन जाते।
1: और जिनको साड़ी पहनने का अभ्यास है तो वो बहुत जल्दी पहन लेते हैं। कुछ बहनों को अभ्यास कम होता है तो सीखा भी जा सकता है।
0: और आजकल तो सिलवा भी सकते हैं साड़ियाँ, यानी आप उसमें बिल्कुल एक हुक लगाना है और पल्लू भी उसमें सिला हुआ ही होता है तो बिल्कुल जितना समय हमें सूट पहनने में लगता है
1: उतना ही समय में साड़ियाँ भी पहन उसी तरह से पहना भी जाता है। लेकिन वो खुद जब पहना जाता है ना सोनाली, जब खुद प्लीट लगाई जाती है और पल्लू को सजाया जाता है ना, उसका मजा
0: उसकी बात कुछ और होती है ना।
1: चलिए तो गीत सुन ले,
0: सुनते हैं गीत।

दिया होठ लाल लाल, हर हर मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छेक लाल लाल।

Run, run!

0: मंगल के कुर्ते पे एक लाल लहार पाल कर दिया हमारो।
1: हाँ तो सोनाली, हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि दैनिक जीवन में क्या कुछ करना है इस पर ध्यान हमारा थोड़ा कम हो जाता है और हम सोशल मीडिया की बहसों में उलझे रहते हैं।
2: और हमारी जो सखी है, हमने पूछा था ना कि क्या कर रहे हैं मंदाकिनी जी, हमारी एक सखी ने कहा कि हम अचार नहीं बना रहे, हम प्रेस करते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। और एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद हमें पसंद नहीं, हम तो विविध भारती के पेज पर श्रोताओं के अच्छे विचारों को पढ़ते हैं जिससे जानकारी भी मिलती है और आनंद भी आता है।
1: क्या बात है, क्या बात है, छा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही, सही बात है।
2: तो ऐसी जब
1: की बहसों में पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ सार्थक सुने। और विविध भारती एक ऐसा उनके लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब कुछ सार्थक होता है, कोई वाद विवाद नहीं
2: होता और बस मनोरंजन के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है।
1: एक पंच दुखा है ना। तो आज हम सोशल मीडिया के वाद विवाद पर, समय की बर्बादी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है सोनाली, हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और इसके माध्यम से हम दुनिया भर की जानकारी है, समाचार और विचारों को तुरंत जान भी लेते हैं, जुड़ भी जाते हैं, जरूरी भी है, और लोगों को अपनी प्रतिभा को और विचार को व्यक्त करने का ये अवसर भी देता है, मौका भी देता है।
2: मंदाकिनी जी, ऐसा होता है कि विचारों में अंतर होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग विचार समाज की सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
1: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का, हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं। और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
2: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसे ही कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
1: हाँ, हाँ।
2: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
1: हाँ, हाँ।
2: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है। तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम
1: बर्बाद कर देती है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
2: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
1: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं क्योंकि लगातार जो हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
2: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा, रहूंगी, है ना।
1: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
2: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत, ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए,
2: थोड़ा सोचे समझे, संयम से काम।
1: हाँ, वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली, कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें, या समय की बर्बादी तो नहीं है, हम किस से बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ये सब भी हमें समझना होगा।
2: और मंदाकिनी जी, एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती, बहुत कड़वे, बहुत गंदे, बहुत भद्दे, अभद्र भाषा का बहुत
1: इस्तेमाल
2: होने लगता है। तो वो एक गलत है, वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
1: जी उसे आप देखिए ना, समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं, उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं, तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
2: तो सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए, समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग, और आप अपनी बनाइए ऐसी जहाँ पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें, तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
2: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले, तो यही माध्यम ज्ञान, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
2: यानी पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में
1: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताब।
2: आज तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
1: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में, कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, तो उसका सदुपयोग करना,
2: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा अच्छा है, नहीं जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
1: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद हो, सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए
2: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
1: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है। मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव की पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है, ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें, और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा। और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनके पोस्ट ध्यान से पढ़ लें, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी, क्योंकि प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय गुस्से और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है। मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है और सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझ कर ही अपने विचार रखें। अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं, अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मतलब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं। तो इस तरह से कितना बुरा लगता है आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है, है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथ ही लिखते कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवत गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
0: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अलग करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं, ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को संतुलन रखता है उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंगी की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है। ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य, मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती है। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूँ कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों और सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
0: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम वो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज नहीं तो
1: साल नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी।
0: जिंदगी
1: और इतना सुंदर जीवन मिला है,
0: हम खत्म कर दें
1: जी। तो बच्चों को ये हमें, और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए, ये डिश आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहेंगे, ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो बचपन से ही उन्हें
0: संयम सिखाया जाए। दूसरा वही की परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना, कि आप अपने जीवन को ही समाप्त कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है, और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का।
1: गाना सुनाना चाहिए।
0: सुना

0: मंदाकिनी जी, हमारे
1: जी
0: बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी आधा छोटा चम्मच, इलायची एक पाउडर छोटा चम्मच, इसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और आधा कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बरनी में रखे। इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ
1: खा सकते हैं। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी।
2: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना होता, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत को सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़,

0: 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक, स्वादानुसार चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है, आम को तैयार करना है। कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छील कर मध्यम आकार के टुकड़ों में काटी क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला ले और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गर्म किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अचार खा सकते हैं।
1: मेरे तो मुंह में पानी आ गया। थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
0: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
1: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं और 1.25 किलो चीनी है, 4-5 कप पानी है, 4-5 इलायची है। फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरे। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
0: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा अचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का अचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं। जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और उसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं। तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखाकर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
1: और अब क्या करना है?
0: अब तो हमें बहुत अचार खिला दिया है श्रोता को। हमें
1: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुन लेते हैं।
2: अभी न जाओ छोड़ कर।

बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले।

में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का ये प्यार।

0: हाँ दिल अभी भरा नहीं
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
2: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
3: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
2: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
3: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
2: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
4: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान।
1: अथ स्वागतम,
2: शुभ स्वागतम,
1: अथ स्वागतम,
2: शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगल,
1: आनंद मंगल मंगल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में

0: मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में, आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
2: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं, और खासतौर पर हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
1: संगीत सरिता अभी भी आता है।
2: उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे। और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे, तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
1: जी जी। और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे, मेरे ख्याल से पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
2: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
1: अच्छा।
2: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था। और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया। और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में, फाइनेंस कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइनेंस कॉलेज है, वहां एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहां हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहां ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्प्रेरी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई।
1: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ।
2: जी हाँ।
1: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को?
2: जी जी, जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप, किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसे और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो,
1: क्या बात है।
2: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यही रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो।
1: जी, तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में
2: उस वक्त? हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली

0: या मसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं। तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले, और
1: जी
0: अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनीचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी। तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी।
1: वाह,
0: तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
1: मंथन करने
0: हिला
1: वाले
0: देने
1: हो।
0: वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भाई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जो फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कंप्लीटली। और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बढ़िया
0: मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले,
1: जी।
0: और हमारे जो भी देखने वाले थे जांचने वाले थे उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
1: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन्य प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते हैं?
0: मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपनी जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में,
1: जी
0: फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो है आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक

0: अनेक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्रकला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को काफी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: ओ शाम कुछ

गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं।

0: कौन सी भी मिलना जुलना और फिर उन के गांव जाना, उनके गांव में जा करके उनके साथ काम करते हुए समय बिताना, ये सारा चीज जो है उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में। तो वो उनका जो देखना है वो इतना निर्दोष है और उनका जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपने सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें तो वो लोग भी इसी सिंप्लिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
1: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
0: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूँ, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं। और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग है वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज्यादा चमकीला और इतना ज्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, होता हरा और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब फिर रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीजें नजर आने लगती हैं। कई रूप भी नजर आने

0: लगते हैं, कई रेखाएं भी नजर आने लगती हैं, किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना संदेह करते हैं कि हम उसको समझना चाहते हैं, जो कि एक गलत रास्ता भी हो सकता है। किसी चित्र को समझने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है। तो जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपके साथ उसका एक संवाद शुरू होता है और वो चित्र खुलना शुरू हो जाता है आपके साथ धीरे धीरे। आप अपने घर में लाके उसको लगाते हैं तो आप उसको रोज अगर देखते हैं तो रोज आपको एक नई कुछ उसमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो वो एक तरह से ग्रो भी होता है आपके साथ रहते रहते, जैसे हम लोग भी ग्रो होते हैं वैसे चित्र भी विकसित होता रहता है लगातार। तो ये जो चीजें हैं हर दर्शक को ख्याल रखनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना आना है, तो कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मैं चाहूंगा कि भूपेन का एक गाना, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।
1: मौसम फिल्म का गाना है
0: जी हाँ,
1: सुनते हैं यही गाना।

करवा लिए हुए दिल टूटा है फिर वही।

जागे देर तक तारों को देखते रहूं छत पर।

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की। रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बैंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि 3-4

0: महीने लगेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहां से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई, उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ। और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
1: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आया और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना है जरा बताइए।
0: वो मेरा पहला वन मैन शो था बंबई में और जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चस्या हर्विस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे। तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं, तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चर्चा हवी राय, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी डेविडा दोनों थे और फिर उन्होंने हमसे बात बात करी, तो काफी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
1: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की कला को ले जाते हैं, तो हम सब के लिए फख्र की बात है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मकबूल फिदा हुसैन से आपका नाता रहा है और तो इनके बारे में बताइए, इनसे कुछ खास बारीकियां सीखने को मिली या आपने पिताजी से ही सब कुछ सीखा आपने?
0: हाँ नहीं, हुसैन साहब से तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला और हुसैन साहब के साथ एक ऐसा संबंध बना बाद में जा करके कि उनकी मैंने जीवनी भी लिखी और उनकी जीवनी जब पढ़ी उन्होंने और लंदन में मेरी उनसे मुलाकात हुई तो बोले यार हमारी ऑटोबायोग्राफी से आपकी बायोग्राफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है क्योंकि उसका 6 महीने में दूसरा एडिशन छपा था तो इतनी ज्यादा वो बिकी थी। तो हुसैन साहब इस बात से बहुत ही खुश हुए थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराओ तो अपन लंदन में रिलीज करेंगे। और फिर वो अनुवाद इतने धीमी गति से हुआ, बाय द टाइम जब तक वो अनुवाद पूरा हुआ हुसैन साहब दुनिया में नहीं रहे, तो वो उनकी ख्वाहिश अधूरी रही। एक उनकी दूसरी भी ख्वाहिश थी, उनका 1956 में पहला वन मैन शो हुआ था प्राग में और वहां पर उनके साथ उनकी जो इंटरप्रिटेटर थी मारिया, उनके साथ उनका प्रेम शुरू हुआ और फिर बाद में उनसे वो शादी भी करना चाह रहे थे तो वो हो नहीं सकी। और मारिया ने जब ये शादी करने के लिए गए उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप दूसरी संस्कृति से आते हैं, मैं दूसरी संस्कृति को बिलोंग करती हूँ तो शायद ठीक से नहीं होगा। तो हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वन मैन शो किए थे प्राग में और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए और वो उन्होंने 80 चित्र जो है अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे
1: जी।
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैम्प नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो है 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस चरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और

0: मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो आपने
0: तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ, तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहां हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई, तो वो हो नहीं पाया।
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी,

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया और इनके भी तो सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर है वैदेही, उनको बोल करके अपने ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से स्कंदगुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला, और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है, ही वाज ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
0: जी।
1: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे, और फिर बहुत ही जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मार्टिस का नाम लिया जाता है, तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
0: जी जी।
1: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस

0: में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया। उनके परिवार पे जो संकट आते थे, यहूदी होने के नाते उनको कई चीजों से वंचित रहना पड़ता था। मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूं। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे दिख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
1: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर। हाँ। तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं?
0: ये जो मेरी किताब है, इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में। और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी। वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो, तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी। तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी। तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ मेरे जो पर्सनल संबंध थे, इतने साल 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था। और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना, क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहां पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहां कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, 6 हु डिक्लाइन ट्रिनाले। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आज गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था
1: जी जी।
0: तो सबसे पीछे ही था, तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, मैं स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना मूर्ति सी नजर, बट ही रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट है अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कानंद की ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है वो।
0: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में, एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं है। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत जरूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भी हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसका हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना।
0: बिल्कुल।
1: तो वो जो बनाना है खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं।
0: जी।
1: तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक होकर के, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो। मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
0: जी जी जी।
1: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फाक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है
0: जी,
1: क्योंकि
0: जी।
1: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, तो वो शायद रंग ही है जो मनुष्य को संबोधित है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
0: जी, जी।
1: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
0: जी जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाए?
1: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा
0: जी सुनते
1: ये
0: हैं।
1: ये वाला सुनता
0: है।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: हम मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो है अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीजें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें?
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीजें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और वो उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार

0: जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
1: जी, ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
0: हाँ,
1: ये भी थोड़ा सा बताएं।
0: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं, और आप रंगों को पास पास रख कर के भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती हैं। जरा सा आप अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
1: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
0: इसमें दोनों तरह की चीज होती है। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं, और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं, और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया, तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है, आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते,
1: और वापस उस चित्र में उस यात्रा में वापस लौटना भी मुश्किल होता है
0: वो।
1: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
2: आज के मेहमान।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM 101.8 MHz पर शाम के 5 बजे है। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: सोच क्या रहे हो है?
1: इनमें कई सारा स्वरोजगार योजनाओं है, जिनमें सबसे पहला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी ऋण योजना है, जिनका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं ने आपको स्वयं रो नए उद्योग या व्यवसाय शुरू करने वास्ते मदद करना है। लोन की राशि इन तरह से मिले है कि विनिर्माण क्षेत्र रे वास्ते 50 लाख तक और सेवा क्षेत्र रे वास्ते 20 लाख तक रे सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं। और सरकारी सब्सिडी भी यानी कि परियोजना लागत में 15% से लेकर 35% तक री सब्सिडी रे रूप में यानी कि वापस जिको सब्सिडी आपो ना मनी मिले है, पैसा वापस जिको मिले है वो सब्सिडी रे रूप में प्राप्त हो जावे है। इन योजना रे बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने वास्ते आपने नजदीक रे ई मित्र माथे जाकर PMEGP ने लगाए कर इन आवेदन करके अपन इन योजना रो पूरो पूरो लाभ उठाए सका हाँ। इन योजना रो नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिन के तहत आपने आ लोन योजना भी प्राप्त हो जावे है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY छोटे और सूक्ष्म उद्यमों ने बढ़ावा देने वास्ते बिना गारंटी रे लोन उपलब्ध कराए जावे है, जिनमें शिशु लोन 50 लाख तक रो नयो व्यवसाय शुरू करने वास्ते मिले है। किशोर लोन यानी कि 50,000 से लेके 5 लाख तक रो व्यवसाय ने विस्तार रे वास्ते भी प्राप्त हो जावे है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार उद्यमी योजना यानी कि आ योजना स्वरोजगार के तहत युवा लोगों ने आपरे स्वयं रोजगार ने चालू करने वास्ते राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों में आपरे आपरे राज्यों में युवाओं रे वास्ते विशेष योजनाओं चलाई जावे है, जिनमें ब्याज मुक्त लोन दियो जावे है। कई राज्यों में युवाओं ने 5 लाख से लेकर 10 लाख तक ऋण बिना ब्याज रे बिना गारंटी रे प्रदान किया जावे है, जिनमें सरकार द्वारा मार्जिन मनी यानी कि सब्सिडी सहायता भी दी जावे है। आवेदन रे वास्ते आपने नजदीक रे ई मित्र माथे जाके MSY यानी कि MSY दबाए के और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रहते हैं जिको भी डॉक्यूमेंट्स या कागजात आपने जमा कराना हुए वो जमा करा के आप इन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना रो पूरो पूरो लाभ उठाए सका हाँ। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, जेडो की नाम से ही पता चले है कि नारी शक्ति रे उद्यम ने प्रोत्साहन देने वास्ते आ योजना चलाई जावे है, जिनमें महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों ने उद्यमी बनाने वास्ते एक व्यापक योजना है। तो दोस्तों आ बात हुई स्वरोजगार रे वास्ते सरकारी योजनाओं के बारे में और इनके बारे में मैं आपने बतायो। आगे भी मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तार से आप चर्चा करता। इनसे पहले आप सुनो आ संदेश।
2: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान।

0: सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: कनाडा देश
2: युवा दोस्तों, आप अखबार सुन रहा था संदेश और इन संदेशों पहला आप बात कर रहा था स्वरोजगार के वास्ते सरकारी योजनाओं के बारे में। तो मैं आपने बताया कि किन तरह से तीन योजनाओं इन तरह से है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दूसरो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तीसरी है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और चौथी है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इनमें महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों ने उद्यमी बनाने वास्ते आ एक व्यापक योजना चलाई गई है। विशेष रूप से छोटे सड़क विक्रेताओं और रेहड़ी पटरी वालों के वास्ते एक अत्यंत ही उपयोगी योजना है। इनको लाभ किन तरह से मिला है, बिना किसी गारंटी के 10,000 से लेकर 50,000 तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करके आप आपके कार्य ने बढ़ावो दे सका। हाँ, ब्याज में पूरी तरह से छूट, यानी कि समय माथे लोन चुकाउन को 7% री ब्याज री सब्सिडी आपने प्राप्त हो जावे है। और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने वास्ते आप आपके नजदीक रे ई मित्र मा से जाके पीएम पोर्टल विजिट करा और प्राप्त करा पूरी जानकारी। और अगर आप कोई भी विशिष्ट योजना यानी कि मुद्रा लोन योजना या कोई भी योजना के बारे में ज्यादा विस्तार से जानना चाहो हो तो आपकी योग्यता के अनुसार तक तो उपयुक्त योजना रो सुझाव प्राप्त करके व्यवसाय रा प्रकार विनिर्माण सेवा व्यापार आदि रे मोयने आपकी शैक्षणिक योग्यता बताए के इन योजनाओं रो पूरो लाभ आप उठा सका। हाँ, तो दोस्तों आ बात हुई स्वरोजगार के वास्ते सरकारी योजनाओं के बारे में और आगे आपारी चर्चा ये चलती रहते। उनसे पहला आप सुनो प्यारो सो मीठो सो गीत जिन्हें गायो है सीमा मिश्रा।

0: युवा दोस्तों, आप बात सुन रहा था प्यारो सो मीठो सो गीत और इनकी सो पहला आप बात कर रहा था। स्वरोजगार रे वास्ते सरकारी योजनाओं के बारे में और हमें आप बात कर रहा मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण वास्ते राष्ट्रीय कार्यक्रम है, भारत सरकार द्वारा शुरू करो गयो है और एक आ एक प्रमुख सुधार है जिनसु की जिनरो उद्देश्य सरकारी अधिकारियों जी कार्य क्षमता ने बढ़ाणो, उमरी भूमिका आधारित प्रशिक्षण देवनो और शासन प्रणाली ने अधिक पारदर्शी तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनानो है। भारत सरकार द्वारा शुरू करियो गयो एक प्रमुख सुधार कार्यक्रम है जिनमें कि अधिकारियों की कार्य क्षमता ने बढ़ाणो और उन्हें प्रशिक्षण देवनो, शासन प्रणाली ने और भी ज़्यादा पारदर्शिता तैयार करनो, आ सब बातों इन कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी में आवे है। इनमें अब सबसे पहली बात आ कही जावे है कि इन मिशन रो आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म यानी कि इन मिशन में डिजिटल आधार आई गॉट कर्मयोगी नामक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म तैयार करियो गयो है जिनमें कोर्स और सामग्री इन तरह से तैयार किए गए कि सिविल सेवकों के वास्ते केंद्र राज्य और स्थानीय स्तर के कर्मचारियों के वास्ते विभिन्न प्रकार की स्वयं गति कोर्स ने बनाया गया है जिनसे कि ओ शिक्षण जिनसु की जिता भी लोग इन कार्यक्रम से जुड़ा है ओ शिक्षण सामग्री ने समझ सके और प्रशिक्षण उपलब्ध कर सके। एक्सेस में बताया गया है कि कर्मचारियों के द्वारा वेबसाइट के माध्यम से सीधा लॉग इन करके आपकी क्षमता और कौशल ने लगातार बढ़ायो जा सके हैं। इन मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत आपने बताऊँ तो क्षमता संवर्धन कर्मचारियों ने उमरी दैनिक प्रशासनिक जिम्मेदारियों और ज्या की ड्राफ्टिंग करना, पे ऑफिस मैनेजमेंट करना, आरटीआई आदि जितना भी उमरा दैनिक कार्य है उनमें और ज़्यादा सुधार करने वास्ते व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने वास्ते इनरो मुख्य उद्देश्य मिशन कर्मयोगी रो आही है। इनके साथ में भूमिका आधारित दृष्टिकोण, नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन सुहट कर अधिकारियों ने उन्हारी विशिष्ट भूमिका कार्य की आवश्यकता के अनुसार तैयार करनो, इन तरह से घना सारा नियम बनाए के मानव संसाधन प्रबंधन सुहट कर अधिकारियों ने उन्हारी विशिष्ट भूमिका कार्य की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने तैयार किन तरह से करना है, आ सब बातों मिशन कर्मयोगी रे मायने सिखायो जावे है। तो दोस्तों आ बात हुई मिशन कर्मयोगी रे बारे में और आगे आप चर्चा ये चलती रहते, पहले आप सुनो आ संदेश।
1: जानते ही होंगे कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान

0: सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

तो दोस्तों, इन संदेश उपला आपको बात कर रहा था मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो मैं आपने बताया कि किन तरह से कर्मचारियों ने और भी ज़्यादा समझदार और प्रशिक्षण प्राप्त करने वास्ते और भी ज़्यादा जिम्मेदार बनाने वास्ते इन मिशन कर्मयोगी ने शुरू करी गयो है। और इनका उद्देश्य और सिद्धांत आपने बताऊँ तो ऑन साइट लर्निंग ने ऑफिस से दूर जाकर सीखने बजाय कार्यस्थल ऑन साइट माते ही सीखने की पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। ऑफिस मैनेजमेंट RTI आदि रास्ते व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करियो चाहे है। और ऑन साइट लर्निंग ने और भी पद्धति ने सीखने वास्ते और भी ज्यादा मजबूत बनायो चाहे है। इन मिशन कर्मयोगी रेमोय ने लाभ और लक्ष्य के बारे में आपने बताओ तो इन मिशन सरकार और नागरिकों के बीच में संवाद ने मजबूत करना है। इन अंतिम लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत रे दृष्टिकोण ने साकार करने वास्ते कुशल सक्रिय और आत्म प्रेरित सिविल सेवकों ने फौज में तैयार करना है। तो दोस्तों, आ बात हुई मिशन कर्मयोगी के बारे में और आगे आप परिचर्चा यह चलती रहते। पहले आप सुनो आप प्यारो सो मीठो सो गीत जिन्हें गायो है सीमा मिश्रा।

0: युवा दोस्तों, आप बात सुन रहे था प्यारो सो मीठो सो गीत, और इन गीत से पहला आप बात कर रहे था मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो मैं आपने बताया कि किस तरह से मिशन कर्मयोगी आप लोग काम करे हैं, और इन दो लाभ इन तरह से है कि आ मिशन सरकार और नागरिकों के बीच में संवाद ने और भी ज़्यादा मजबूत करने वास्ते मिशन कर्मयोगी बढ़ाया गया है। इन दो अंतिम लक्ष्य भी मैं आपने बताया कि किन तरह से 2047 तक विकसित भारत रे दृष्टिकोण ने साकार करने वास्ते कुशल सक्रिय और आत्मप्रेरित सिविल सेवकों की फौज ने तैयार करना भी मिशन कर्मयोगी रो लक्ष्य इन तरह से निर्धारित करी गई है। तो दोस्तों, आ बात हुई मिशन कर्मयोगी के बारे में, मैं आपने जानकारी दी, और इन बारे इन बाद में हमें आप बात करो युवा और डिजिटल सुरक्षा के बारे में। तो युवा और डिजिटल सुरक्षा से तात्पर्य इन तरह से है कि बच्चों और किशोरों ने इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग रे खतरों से बचाना है। इनमें मजबूत पासवर्ड, निजी जानकारी साझा नहीं करना, संदिग्ध लिंक से बचना और साइबर बुलिंग उत्पीड़न की रिपोर्ट जल्द से जल्द डिजिटल सुरक्षा बचाओ उपाय शामिल में आपकी पूरी तरह से रिपोर्ट में शामिल करना। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने वास्ते निम्नलिखित कई सारी बातों हैं जिन्हों आपने ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात आ है कि मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड लगाकर आप इन डिजिटल सुरक्षा प्राप्त कर सका। हाँ, सभी ऐप्स और सोशल मीडिया खातों में से अलग और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें जिनमें अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल हो। साइबर सुरक्षा रो सर्वोत्तम तरीको है। इन बाद में निजी डेटा की सुरक्षा, अनजान लोगों के साथ में कभी भी व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड या घर और परिवार को तो साझा नहीं करना चाहिए। यह जानकारी बच्चों और किशोरों ने पूरी तरह से प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो डिजिटल सुरक्षा प्राप्त कर सके और इनके साथ में साइबर बुलिंग से बचाव किन तरह से करना है। यदि कोई ऑनलाइन अभद्र टिप्पणी या धमकी देवे है तो उनको जवाब ना देना, तुरंत लॉग ऑफ करके उनकी रिपोर्ट अपने माता पिता या शिक्षकों ने दी जा सके है। इनसे ही इंटरनेट सुरक्षा और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जावे है। डिजिटल फुटप्रिंट जिसको कि आप ऑनलाइन पोस्ट, लाइक या कमेंट कर रहा उनको स्थायी रिकॉर्ड बन जावे है जिसको कि भविष्य में आप छवि प्रभावित कर सके है। हमेशा सोच समझकर पोस्ट करना चाहिए। साइबर सुरक्षा और आज रे युवा रे साथ में आ कार्य बड़े ही सोच समझकर मोबाइल रो यूज करना चाहिए। इंटरनेट रो यूज भी बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। तो दोस्तों, आ बात हुई सोशल मीडिया और इंटरनेट से बच्चों और किशोरों ने किन तरह से आप बचा सका हाँ, किन तरह से उन्होंने सुरक्षित रख सका हाँ, इन बारे में मैं आपने बताया। आगे आप चर्चा यूं चलती रह से पहले आप सुनो आ संदेश।
1: आप जानते ही होंगे कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: युवा दोस्तों, आप बात सुन लिया था संदेश, और इन संदेश से पहले आप बात कर रहे था युवा और डिजिटल सुरक्षा के बारे में। तो मैं आपने बताया कि किन तरह से बच्चों और किशोरों में डिजिटल सुरक्षा प्राप्त करानी चाहिए। युवाओं और डिजिटल सुरक्षा रो अर्थ है युवा पीढ़ी ने इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों यानी कि मोबाइल कंप्यूटर रो उपयोग करते समय ऑनलाइन खतरों जो कि हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग या डेटा चोरी से बचाना चाहिए। ऑनलाइन माध्यमों से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कारण युवा वर्ग और उम्र खतरे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, जिनमें बच्चा और किशोरावस्था का बच्चा सबसे ज़्यादा शामिल हुए है। डिजिटल युग में युवाओं ने सुरक्षित रखने वास्ते कुछ प्रमुख उपाय आपने बतावा, जैसे मजबूत पासवर्ड। ए बाद में आपने पहले भी बताई कि हर अकाउंट वास्ते अलग और मजबूत अक्षरों, अंकों, विशेष चिन्हों रो मिश्रण पासवर्ड रो उपयोग करना चाहिए। सुरक्षा बढ़ाने वास्ते मल्टी फैक्टर ने पूरा यूज करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए। गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी, आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे कि बैंक विवरण, पासवर्ड, आधार कार्ड, घर रो पतो, कोई भी अपरिचित व्यक्ति या संदिग्ध वेबसाइट माथे साझा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया सेटिंग, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल ने प्राइवेट रखनी चाहिए। सुनिश्चित करा कि आपारी पोस्ट या व्यक्तिगत जानकारी केवल आपारा विश्वसनीय मित्र या परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। सॉफ्टवेयर और ऐप अपडेट, आपके डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स ने हमेशा अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि अपडेट्स में सुरक्षा से जुड़ी कमियों भी ठीक की जा सके हैं। इनके साथ में भारत में युवाओं के वास्ते डिजिटल नियामक भी बनाया गया है, जिनमें भारत में युवा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के वास्ते डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 लागू करी गया है। इनके तहत 18 वर्ष से कम आयु बच्चों रे व्यक्तिगत डेटा से माता पिता या कानूनी अभिभावक री सत्यापित सहमति रे बिना प्रोसेस नहीं करियो जा सके। तो दोस्तों, इन तरह से आप डिजिटल सुरक्षा प्राप्त कर सका हाँ, और कई सारे साइबर क्राइम आदि से बच सका हाँ। तो दोस्तों, आ बात हुई युवा और डिजिटल सुरक्षा के बारे में। आगे आप और चर्चा यही चलती रहे से पहले आप सुनो आप प्यारो सो मीठो सो गीत।

0: युवा दोस्तों, आप अपवाद सुन रहा था आप प्यारा सुजीत और रणवीर सु पहला अपवाद कर रहा था युवा और डिजिटल सुरक्षा के बारे में। तो मैं आपने बताया कि किन तरह से युवाओं ने डिजिटल सुरक्षा प्राप्त कराने वास्ते और साइबर क्राइम से बचने वास्ते पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए और बच्चों और किशोरावस्था रहे बच्चों ने खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो आ बात हुई युवा और डिजिटल सुरक्षा के बारे में। हमें आप सुनो आ संदेश, इनके बाद में आप और चर्चा इन चलती रहती है।
1: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: युवा दोस्तों, आप बात सुन रहा था संदेश और इन संदेश से पहला आप बात कर रहा था युवा और डिजिटल सुरक्षा के बारे में। तो मैं आपने विस्तार से बताया कि किन तरह से युवाओं ने, बच्चों ने, किशोरों ने, सबने डिजिटल सुरक्षा प्राप्त करनी बहुत ही जरूरी है। इनके बाद में हमें आप बात कर रहा हूँ गर्मी के अनुकूल हो खान पान। गर्मी रो मौसम है और सबने आप खान पान रो पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि पर शरीर स्वस्थ रह सके। गर्मी के अनुकूल खान पान एड़ो होना चाहिए जो कि शरीर ने ठंडो रखे, पाचन ने आसान बनाए रखे और पानी की कमी डिहाइड्रेशन से दूर रहो जा सके। इनके वास्ते आपकी डाइट में ताज़ा रसीला फल, हरी भरी सब्जियां, ठंडी तासीर वाला पेय पदार्थ और हल्को भोजन शामिल करना सबसे अच्छो रहे है। इनमें सबसे पहला आवे है पानी और पेय पदार्थ, यानी कि दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। छाछ और लस्सी रो भी उपयोग करना चाहिए। गर्मियों में छाछ, मट्ठो और एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है जिनमें जीरो और कालो नमक डालकर पीने से पेट में ठंडक पहुंचे है। नारियल पानी पीना चाहिए शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और पानी के स्तर ने बनाए रखने वास्ते सबसे बेहतरीन प्राकृतिक पेय है। नींबू पानी या शिकंजी यानी कि इंस्टेंट एनर्जी देवे हैं और विटामिन सी से भरपूर होवे है। पारंपरिक शरबत, बेल रो शरबत, आम रो पन्नो और सत्तू रो शरबत, खसखस रो शरबत लू से बचावे है और शरीर ने अंदर से ठंडो कर रखे है। मौसमी फल, रसीला फल यानी कि तरबूज और खरबूजा 90% से अधिक पानी हुए है जो कि शरीर में पानी की कमी ने पूरा कर देवे है और त्वचा भी स्वस्थ रहे है। आम फलोरा राजा आम रो सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए ताकि ऊर्जा देवतो रहे। अन्य फलों रो भी सेवन करना चाहिए। पपीता, अंगूर, संतरा और आलू बखारा आदि फलों भी गर्मी रे वास्ते बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हुए हैं। हरी सब्जियों रो पूरा उपयोग करना चाहिए। हल्की और सुपाच्य

पानी वाली सब्जियां क्या कि लौकी तुरई टिंडा परवल और सब्जियों रो खाउनी चीजे ताकि आ अपन सुपाच्य रह सके आसानी सुपच जावे है और शरीर में भारीपन भी कोनी रहे है। सलाद खीरा ककड़ी टमाटर और सलाद ज्यादा से ज्यादा खाओ आ शरीर में हाइड्रेट रखन में मदद करे है। पुदीना और धनिया इनमें आपकी चटनी या छाछ में जरूर शामिल करना चाहिए। इनकी तासीर भी ठंडी रहे है। तो दोस्तों आ बात हुई गर्मी रहे अनुकूल खान पान रहे बारे में। इन आगे इन बारे में और बात करता पहले आप सुनो आप प्यारे सो मीठो सो गीत।

युवा दोस्तों, इन प्यारे से गीत रे साथ में ही समय हो गयो है आपसे विदा लेवन। फिर मिलता हूँ नई बातों रे साथ में, तब तक मौज करो इंतजार। राम राम।

0: जानते
1: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवन। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज शाम को 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि के 9 बजे समय रहेगा न्यूज़ 8:09 का, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

रात्रि के 9:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम चर्चा का विषय, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा।

रात्रि के 11 बजे समय रहेगा हिंदी में समाचारों का, और 11:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचारों को, जिन्हें हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले किया जाएगा।

शाम के 6:30 पर समय रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, और 6:40 पर आप सुन सकेंगे जिले की चिट्ठी को, और 6:45 पर समय रहेगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का। इन समाचारों को हमारे जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम के 6:15 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे भजनों का कार्यक्रम वंदना। शाम के 7 बजे समय रहेगा ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम ग्राम जगत का।

शाम के 7:30 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम राही हम अपनी राहों की। शाम के 8 बजे समय रहेगा फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत कार्यक्रम को हमारे श्रोता एक बार फिर से सुन सकेंगे रात्रि के 9:15 पर और एक बार फिर से 10:30 पर। शाम के 8:30 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि के 10 बजे हमारे श्रोता सुन सकेंगे राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत को। और अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:05 पर आप सुन सकेंगे रामचरितमानस गान।

0: ये थी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान, एपिसोड नंबर 106, 106।
1: एक सौ छः 106।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं, बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है कार्यक्रम वंदना का। आइए आपको सुनवाते हैं ये भजन हरिओम शरण का गाया।

0: जय जय गणपति जय जय गणेश
1: जय जय गणपति जय जय गणेश
0: सिद्धि विनायक जय करुणेश
1: सिद्धि विनायक जय करुणेश जय जय
0: जय जय गणपति।

0: जय जय गणपति जय जय गणेश
1: जय जय गणपति जय जय गणेश
0: जय जय गणपति जय जय गणेश
1: जय जय गणपति जय जय गणेश
0: सिद्धि विनायक जय करुणेश
1: सिद्धि विनायक जय करुणेश
0: ओ सिद्धि विनायक।

गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों की आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 631 करोड़ रुपए से अधिक के 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीवरेज सफाई के लिए सुपर सकर मशीन, कचरा उठाने के लिए अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन को रवाना किया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की जन जागरूकता के लिए ब्रांडिंग ऑटो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजधानी जयपुर के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे।
1: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
0: समारोह में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का माध्यम बन रहे हैं।
1: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
0: पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा, साथ ही ये प्रोजेक्ट प्रदेश का ग्रोथ इंजन साबित होगा। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर हुई पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उच्च स्तरीय बैठक में कही। श्री शर्मा ने रिफाइनरी की प्रगति और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही रिफाइनरी का शुभारंभ करेंगे। बैठक के दौरान HRRL प्रबंधन की ओर से मुख्यमंत्री को रिफाइनरी से निकल रहे विभिन्न उत्पादों के नमूने भेंट किए गए। गौरतलब है कि रिफाइनरी से कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का उत्पादन शुरू हो चुका है। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विशेष अभियान शुरू किया गया है। 5 जुलाई तक चलने वाला यह अभियान महिला और बाल विकास विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशक वासुदेव मालावत ने बताया कि अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक की स्थापना के साथ प्रवेशोत्सव और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने अपने क्षेत्र में घर घर संपर्क कर जन समुदाय को खिलौना बैंक की जानकारी देंगी। 3 से 6 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों का चिन्हीकरण कर अभिभावकों को 1 जुलाई के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को सुबह 9 बजे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक का शुभारंभ होगा। RPSC के कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौर ने आज जयपुर लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मुलाकात की। श्री बागड़े ने उनकी शिष्टाचार भेंट थी। गौरतलब है कि आयोग के सदस्य श्री केसरी सिंह को हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने CA इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में डोंबिवली के शार्दुल शेखर विचारे ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। अभिनव सतीश ने दूसरा और तीर्थ जैन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का मुख्य परिणाम आज जारी हो सकता है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि आज हुई बैठक में वीडियो भर्ती के अंतिम परिणाम का अनुमोदन किया गया। इस बीच बोर्ड ने आज सुबह कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नतीजे जारी किए। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 1967 में पासपोर्ट अधिनियम लागू होने के उपलक्ष में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा और सशक्त नागरिक के संकल्प को दोहराना है। देश 2014 में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या के 770 था, जो अब बढ़कर 545 हो गई है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर पेश है समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
2: पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे छोटे और दूर दराज के शहरों के लोगों को आसानी से पासपोर्ट मिल सके। हाल ही में हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि देश में पासपोर्ट की बढ़ती तादाद बढ़ती आकांक्षाओं को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या बढ़कर 138 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि अब पासपोर्ट मुहैया कराने की प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। ये विकसित भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है।
0: भारतीय सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। नागरिकों को जागरूक करने और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। इसके जरिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना सेना तक पहुंचाने की प्रक्रिया समझाने और आपदा के समय नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के संग्राना 24 और 25 आरबी गांवों से इस ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा। डीग जिले के कामा क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार कार ने करीब 10 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के शिकार लोग तीर्थराज विमल कुंड की परिक्रमा कर पैदल जा रहे थे। सभी घायलों को कामा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 की हालत नाजुक होने पर उन्हें भरतपुर के RBM अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक हुई इस घटना से भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। प्रदेश में प्री मॉनसून की बरसात कई जिलों को भिगो रही है। आंधी बारिश की गतिविधियों के कारण पिछले कई दिनों से प्रदेश में हीट वेव से राहत बनी हुई है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में अब तक 25 जिलों में असामान्य बरसात हुई है। 3 जिलों में अधिक पानी बरसा है, वहीं 3 में सामान्य और 9 जिलों में सामान्य से कम बरसात हुई है। मौसम विभाग ने आज भी 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कल उदयपुर को छोड़कर सभी संभागों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने के आसार है। 28 जिलों में येलो और श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर 3 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। इस बीच आज हनुमानगढ़ में दोपहर बाद मौसम बदला और धूल का गुबार छा गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: हनुमानगढ़ जिले में लगभग दो हफ्ते से लगातार दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी व कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि बिरानी इलाके में लगातार दो हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोठ मूंग ग्वार मूंगफली बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मैना देवी आकाशवाणी समाचार हनुमानगढ़।
0: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कृत करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग के 595 संवेदनशील स्थानों की पहचान की है। इन स्थानों से अवैध पार्किंग हटाने के लिए राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। देश के युवा नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 के 8वें संस्करण में जीत हासिल की है। ये पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी इंडिया और सिटी फाउंडेशन की ओर से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के सहयोग से चलाई जा रही है। आयोग ने बताया कि इस वर्ष के चैलेंज के लिए 28 राज्यों के स्टार्टअप से 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। कड़ी चयन प्रक्रिया के बाद विजेता स्टार्टअप को 3.5 लाख रुपए का सीड ग्रांट मिला। वहीं उप विजेताओं को 2,20,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम व्हाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के शिलान्यास का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के संचालन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल्द ही खिलौना बैंक शुरू होंगे और देश में छोटे और दूरदराज के शहरों के लोगों को आसानी के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नेटवर्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। बीकानेर जिले में इन दिनों जल संरक्षण, शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर, कृषि, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। मॉनसून की आहट के बीच किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के प्रयास जारी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या में रही। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अनेक रेल परियोजनाओं और रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों पर काम चल रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय विधि तथा न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी भाग लिया। दोनों मंत्रियों ने आमजन के साथ योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन में योग के महत्व पर बल दिया। योग दिवस से पहले भी जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुर्वेद विभाग के विद्यार्थियों ने जूनागढ़ किले और पब्लिक पार्क में योगाभ्यास कर लोगों को योग अपनाने का संदेश दिया। वहीं सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी जूनागढ़ किले में सामूहिक योगाभ्यास किया। अधिकारियों और जवानों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। जिले में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आम जन को राहत पहुंचा रहे हैं। शिविरों में लोगों को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भूमि संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रमाण पत्रों और लोगों की अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। रामसरा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में घुमंतू सासी समाज के कुछ परिवारों को निशुल्क आवासीय भूखंड के पट्टे प्रदान किए गए। वर्षों से स्थायी आवास के अभाव में जीवन यापन कर रहे इन परिवारों को अब अपना घर बनाने का आधार मिल गया है। लाभार्थियों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत के प्रति आभार व्यक्त किया। उधर पशुपालकों के लिए भी सेवा शिविर उपयोगी साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कई पशुपालकों ने अपने दुधारू पशुओं का बीमा कराया। पांचू क्षेत्र के बंदड़ा गांव में आयोजित शिविर में पशुपालकों को योजना की जानकारी दी गई और मौके पर ही बीमा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों, जैविक संसाधनों की उपयोग और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की उपायों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन लागत कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। कृषि विभाग द्वारा जिले में प्राकृतिक खेती के क्लस्टर विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए कृषि सखियों और प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे गांव-गांव तक इसकी जानकारी पहुंचा सके। जल संरक्षण को लेकर भी जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, बारिश के पानी का संचयन और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित हुई। लोगों को पानी के संरक्षण और जल स्रोतों की देखभाल के लिए प्रेरित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला परिषद परिसर में एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर भी पौधरोपण किया गया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से श्री डूंगरगढ़ में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े पात्र परिवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज 4 जुलाई न जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला एहलकारा सागर मीटिंग की। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र में भी गई खिलौना बैंक शुरू करिया जावेला और देश में नहना और दूर दराज रा शहर री जनता ताई पासपोर्ट रो सुविधो पुगावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्र रा नेटवर्क में लगातार बढ़ोतरी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सांगानेर विधानसभा हलका माए विकास रा 631 करोड़ रुपया बत्ता खर्च वाला कामा री शुरुआत कीनी और पूरा भया काम जनता ने सौंपया। ई मौके राखी ज्या कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री नालियां री सफाई सारू सुपर सकर मशीन, कचरो भेड़ो करण री नुवी मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन ने रवाना कीनी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 रा बारा माए जाग जगावन रा मकसद ब्रांडिंग ऑटो रिक्शा नई हरी झंडी बता रवाना कीना। श्री शर्मा पात्र लोगां ने जमीन रा हक वाला स्वामित्व कार्ड ही दीना। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री कहो कि सरकार राजधानी जयपुर रा विकास सारू लगातार काम कर रही है। वह बतायो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत करेला।
2: 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहाँ आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है।
1: शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर रो जिक्र करता था मुख्यमंत्री कहो कि ऐ शिविर जनता री परेशानियां तुरंत आगे करण रा जरिया बन रहा है।
2: आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं।
1: कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जयपुर के सांसद मंजू शर्मा समेत जनता रा कई नुमाइंदा और मोटी तादाद में जनता मौजूद रही। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज मारा रहवास माथे एहलकारा सागर मीटिंग कर पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रे बारा माए विगतवार जानकारी लीनी। मीटिंग में श्री शर्मा कहो कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान देश री ऊर्जा हिफाजत रो मजबूत खंभो बनवा सागे प्रदेश रो ग्रोथ इंजन साबित हुएला। राज्य रा आंगनबाड़ी केंद्र माए 3-6 साल उम्र ताई रा बच्चा सारू शाला पूर्व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रो खास अभियान चलाई चियो है। महिला और बाल विकास विभाग री ओर 5 जुलाई ताई चलाया जावन वाला ई अभियान रा तहत आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक खोलन सागे प्रवेशोत्सव और पौधा रोपण रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा निदेशक वासुदेव मालावत बतायो कि 30 जून ताई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकारी मदद घर घर जार खिलौना बैंक री जानकारी दी जावेला। इस आगे 3-6 साल ताई रा स्कूल नी जा रहा बच्चा नी पहचान कर वारा मायता ने 1 जुलाई ने आंगनबाड़ी केंद्र माए खिलौना बैंक री शुरुआत रा कार्यक्रम सारू न्योतो दियो जावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग रा कार्यवाहक अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह आज जयपुर रा लोक भवन माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े शिष्टाचार भेंट कीनी। आयोग रा सदस्य केसरी सिंह ने हाल ही माए कार्यवाहक अध्यक्ष री जिम्मेदारी दीरी जी है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI मई 2026 माए लीरी जी CA इंटरमीडिएट परीक्षा रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। परीक्षा माए डोंबिवली रा शार्दुल शेखर विचारे अव्वल रहा, अभिनव सतीश दूजी और तीर्थ जैन तीजी थोड़ माथे रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 रा नतीजा रो ऐलान कर दिनो है। बोर्ड रा अध्यक्ष आलोक राज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा रो मुख्य परिणाम रो ऐलान ही आज जारी भवन रा आसार जताया। वे बतायो कि आज भी मीटिंग में वीडीओ परीक्षा रा अंतिम परिणाम ने मंजूरी दे दी रही जी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मत है AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। वो दिन साल 1967 में पासपोर्ट कानून लागू हेवन री याद में मनायो जावे है। इनरो खास मकसद सुरक्षित पासपोर्ट आसान सेवा और मजबूत जनता रा संकल्प रो दोहराव है। पासपोर्ट सेवा दिवस रे बारा में पेश है समाचार कक्ष सालेहा गाजी री रिपोर्ट।
3: पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र री पहुंच लगातार बधाई जा रही है। जिनो नाना और दूर दराज रा शहरा रा लोगा ने ई आसानी ओ पासपोर्ट मिल रहा है। हाल ही माए व्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन माए विदेश मंत्री एस जयशंकर बतायो कि देश माए पासपोर्ट री बढ़ती तादाद उम्मीद माए बढ़ोतरी रो दर्शाव करे है। माली साल 2025-26 माए पासपोर्ट री तादाद बढ़कर 138 लाख वेगी। वे बतायो कि पासपोर्ट मुहैया करावन री प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है। आ विकसित भारत बनावन रा काम माए प्रेरणा देवन वाली खास ताकत रा तौर काम कर रही है।
1: फौज री ओर श्री गंगानगर जिला रा सरहदों लाग्योड़ा संगराना 24 और 25 आरबी गांव माए जनता माए जाग जगावन और सुरक्षा सहयोग मजबूत करन रा मकसद वॉरियर्स ऑफ नेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाई चयो है। इन जरिए शंका लायक हलचल री जानकारी फौज ताई पुगावन री प्रक्रिया बतावन और आपदा री बगत जनता और फौज बीच मदद बतावन रे बारे में जानकारी दी जा रही है। वो कार्यक्रम 30 जून ताई चलेला। डीग जिला रा कामा हलका माए आज एक तेज जा रही कार करीब 10 जना ने टक्कर मार दीनी। कार री फेंट माए आया लोग तीर्थराज विमल कुंड री परिक्रमा कर और पैदल जा रहा हा। जख्मी लोगा ने कामारा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराई चिया जठौ घना जख्मी 5 जना ने भरतपुर रा आरबीएम सफाखाना में रेफर कर दिया चिया। कार चलावन वालों मौका फरार फेंक्यो। अरे भाई मौसम प्रदेश का कई हलका माए चौमासाओं पहली री बिरखा वेवणु गर्मी उसाता मिली है। जल संसाधन विभाग को मिली जानकारी रे मुजब ई महीना माए हाल ताई राज्य रा 3 जिला माए बत्तो 3 माए सामान्य हर 9 जिला माए सामान्य कम में बरसियो। मौसम विभाग आज ही 20 जिला माए गरज चमक सागे बरसात में वनसारु चेतायो है। महकमा रे मुजब उदयपुर रे अलावा बाकी संभागा माए काली कठे कठे आंधी बारिश रा आसार है। 28 जिला माए येलो और श्री गंगानगर चूरू और बीकानेर जिला माए बरसात रो ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है। ई बीच आज हनुमानगढ़ माए दोपहर पाछे मौसम पलटकियो। माणी खबर नवीस बतायो के वठे मोकलो धूलो उड्यो।
4: हनुमानगढ़ जिले में लगभग 2 हफ्ते से लगातार दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आता है तथा धूल भरी आंधी व कहीं बारिश तो कहीं ओले भी गिरे हैं। इससे आम जन को हीट वेव से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में गिरावट आने से पशु पक्षियों को भी भीषण गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश के कारण खरीफ फसल में भी इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों का मानना है कि वीरानी इलाके में लगातार 2 हफ्ते से हो रही बारिश के कारण मोट मूंग ग्वार मूंगफली बाजरा आदि की फसल को इजाफा होगा। मैना देवी आकाशवाणी समाचार हनुमानगढ़।
1: आज बूंदी जिला रो 785 स्थापना दिवस मनाई चियो। ई मौके जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग री ओर भांत भांत रा कार्यक्रम राखी चिया। ऐतिहासिक गढ़ पैलेस माए शहनाई बजावन और गणेश पूजन रा कार्यक्रम राखी चिया। स्थापना दिवस रा सिलसिला माए देशी परदेशी सैलानिया ने खास स्मारक माए मुफ्त दाखिल दियो चियो। हॉकी इंडिया 5-14 जुलाई ताई ब्रिटेन रा दौरा सारू 24 सदस्यों वाली जूनियर महिला टीम रो ऐलान कर दिनो है। खेदेम शिलेमा चानू टीम री कप्तान बनाई ची है। भारत री टीम नुआ कोच टीम व्हाइट री अगुवाई माए जूनियर एशिया कप समेत आवती अंतरराष्ट्रीय होड़ान री तैयारी रा सिलसिला माए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड माए 7 मैच खेलेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला। इंसारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 में से 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजु सुन ली राव सा 1-800-117-800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ली राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो 4 जुलाई ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा दौर रा काम री शुरुआत रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स रा काम री प्रगति रो जायजो लेवन सारू आला अहलकारा सा गर मीटिंग कीनी। प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र में बेगाई खिलौना बैंक शुरू करिया चावेला। और देश में नाना और दूर दराज रा शहरा री जनता ताई पासपोर्ट रो सुबितो पुगावन सारू पासपोर्ट सेवा केंद्रा रा नेटवर्क माए लगातार बढ़ोतरी। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले सगले भाइयों मन भैरा गणगणा राम राम। साथियों, मानव के चारों तरफ जो प्राकृतिक आवरण है या परिवेश है, जो भी प्रकृति प्रदत्त चीजों पर चारों ओर मौजूद है, जहाँ वायु है, जल है, मृदा है, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु आदि सारी जो है पर्यावरण का घटक है, ये सब मिलकर के पर्यावरण की रचना हुए। और पर्यावरण को है वो बृहत्तर अवधारणा और प्रसिद्धि और संज्ञा दी जाए, ये में जीव और आसपास के वातावरण में संपूर्ण जैविक और अजैविक घटकों और अध्ययन रूप बोध हुए और को तो प्रकृति ने नष्ट करके नहीं बल्कि सुरक्षित रखकर ही अपो जीवन जीवन अपोर दायित्व है। तो पर्यावरण प्रति जो अपर मुख्य दायित्व है कि प्राकृतिक संसाधनों जो जल है जंगल है, जमीन और समझदारी से उपयोग करना है और प्रदूषण कम करना है और अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। यानी कि आप तो हो सके पेड़ लगाओ, आप देखो कि कई प्रकार की सरकार भी है जो कई योजना चलाओ, हमारे नाम पेड़ लगाओ और पर्यावरण सुरक्षित करो, जगह जगह मतलब पेड़ लगाओ। ये प्रकार से पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है और केवल देखो एक कर्तव्य को नहीं बल्कि अपरो दायित्व भी है कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि अगर पेड़ लगा सको तो ही आप उसको है पर्यावरण में सुरक्षित रह सके। और इधर अलावा पेड़ के अलावा जो भी आप आसपास भी जो भी आप देखेंगे वायु प्रदूषण तो वो है, तो यह भी जो है अपना सुरक्षित रखना है ताकि आप जो है आप खुद को स्वस्थ, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित रह सके तो आप जो शरीर है वो भी सुरक्षित रह सके, आप स्वास्थ्य भी सुरक्षित रह सके। इस वास्ते जितो हो सके अपना पेड़ लगाना है और इधर साथ साथ आप सभी को सामूहिक करते हैं कि पेड़ लगाने साथ साथ प्रदूषण कम करना है, पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए अपना पर्यावरण

सुरक्षा के उपायों ने जो है जीवन में शामिल करना। रोजमर्रा की जिंदगी में जो है आपको निम्नलिखित तरीकों कई तरीकों से जो है पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हो। अधिक पेड़ लगाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाने वास्ते वन और कटाई ने रोकना भी मदद कर सकते। पेड़ हवा में शुद्धकरण करे और उन्हें जलवायु में परिवर्तन करे और अपन जो है हवा में शुद्ध करे। जल संरक्षण करके आपको पानी की बर्बादी ने रोको। नल न आवश्यकता अनुसार जो है नल ना आवश्यकता अनुसार ही चलाओ और बंद करो और बारिश में पानी ने जो है सहजना और प्रयास करो। ऊर्जा की बचत करो। जब कमरे से बाहर आप जाऊँ तो लाइट या पंखा बंद कर दो ताकि ऊर्जा कुशल उपकरणों का इस्तेमाल करो और सिंगल यूज प्लास्टिक के बजाय कपड़े थैला और पुनः उपयोग करने वाले बर्तनों का इस्तेमाल करो। कचरे न गीले या सूखे डिब्बे में अलग अलग डालो ताकि कचरों इधर उधर फेंकने बजाय एक डस्टबिन में वहीं डाली जाए। और इसके साथ साथ प्रदूषण कम करने के लिए निजी वाहनों के बजाय साइकिल या सार्वजनिक परिवहन को अधिक उपयोग करो। आप और आसपास को लोगों ने प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य बारे में बताओ और उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करो। ऐसे को सारे पर्यावरण संरक्षण प्रति आप प्रयास अधिक बढ़ावा चाहता हूँ तो आप जान सको कि अपन जो है जो भी आप पर्यावरण प्रति जो आप सारे प्रयास करता हूँ तो आपको जो है सब छुट्टी दे पाता हूँ तो आप आगे भी बड़े बात करता हूँ। पहले सुनिए बढ़िया एक लोकगीत।

ਗੇਰਾ ਬਾਝਤੁਰੀ ਅਮਲਾ ਬੇਲਾ ਪਨਾ।

ਗੇਰਾ ਵਾਝ ਤੁਰੀ ਅਮਲਾ ਬੇਲਾ ਪਲਾ।

तो हवा बहुत ही बढ़िया। हमें लोग गीत सुनियो, मैं बात कर देख के इधर गर्मी का जो मौसम है, और ये गर्मी के मौसम में देखो है पशुधन को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पशुधन जो है भीषण गर्मी में लू से बचाव वास्ते उन्हें पर्याप्त छाया में रखना चाहिए, और पीने के लिए हमेशा साफ और ठंडो पानी ही उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। तथा दिन में 1 से 2 बार उन्हें नहलाना भी चाहिए। दोपहर में 12 से 4 बजे के समय पशु उन्हें बाहर चराने या धूप में बांधने से बचे, और उन्हें जो है संतुलित आहार रूप में हरो चारो दे। भीषण गर्मी पशुओं की सुरक्षा और बचाव वास्ते कई प्रकार से आप उन्हें जो है सुरक्षित रख सकते हैं। पर्याप्त छाया रमाए पशुओं ने सीधा धूप से बचाने वास्ते पक्का शेड, टिन शेड या पेड़ों की छाव रमाए बांधो। टिन की छत में ऊपर से जो है पराली या बेरी से ढक दो। शेड रमाए क्रॉस वेंटिलेशन जो है हवा की आवाज अभी बनी रहे अच्छी होनी चाहिए। खिड़कियाँ खुली रखो और जरूरत पड़ने में से कूलर या पंखा लगाए रखो। जो शेड रहे फर्श में सूखो और साफ रखना चाहिए, और अधिक गर्म होने में से फर्श में पानी रो छिड़काव करके उन्हें ठंडो उपयोग कर देना चाहिए। और वे साथ साथ गर्मी के मौसम में पशुओं की पानी की जरूरत पड़ी तो वह दिन में 3 से 4 बार उन्हें साफ और ताजा पानी पिलाना चाहिए। पानी के बर्तन रमान जो है पानी के कुंड या नाम की नियमित सफाई करो। कुंड में सीधे धूप के बजाय छाव में रखना ज़्यादा सही रहते। और जो है इलेक्ट्रोलाइट्स या डिहाइड्रेशन से बचाने वास्ते पानी में वहाँ नमक गुड़ या ORS रो घोल मिला देना फायदेमंद हो। और चारा खिलावण के समय में जो डॉक्टर इतनी गर्मी रमान पशुओं सारो नहीं खिलावे, चारे को समय सुबह जल्दी और शाम में ठंडे पहरे रमान रखना चाहिए। हरो चारो जो है आहार में हरो चारो अधिक शामिल करें, क्योंकि ये रमान जो है पानी और पोषक तत्व भरपूर हो गई। दाणों मिश्रण रात रमो या सुबह समय में देवे। पशुओं वास्ते शरीर में तापमान सामान्य रखने लिए उन्होंने जो दिन में 1 से 2 बार नहलावे, लेकिन जब धूप से आवे तो उन्होंने तुरंत नहलावन से बचे और शरीर में जो है थोड़ी देर रुक कर शरीर में सामान्य होने देवे। तेज गर्मी के मौसम में मुँह में खोल कर सांस लेना, लाल टपकना, हाँफना या सुस्त होकर गिर जाना से लूर लक्षण है। एडे के मौसम है पशु ने तुरंत छावर में लावे और शरीर में ठंडो पानी डाले और नजदीकी पशु चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए। और दिन रमान जो है दिन रहे गर्म समय रमान दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में बेलो या उठाना जो है खेतर में काम या माल ढूंढो काम नहीं कराना चाहिए, तो ताकि जानवर न अत्यधिक गर्मी और लू बचाने जो है इस तरीका आप अपना करके उन्होंने आपको बता सको। तो आपको आगे भी बड़े बात करता हूँ, पहले सुनिए बढ़िया एक लोगी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम राही हम अपनी राहों की, जिसमें आज आप सुनेंगे अमृत सरोवर योजना, जिसका निर्देशन किया है रामजीलाल मीणा ने। प्रतिभागी है श्यामवीर सिंह, मनीषा पुरोहित, नेहा व्यास, प्रार्थना बिस्सा। तो लीजिए सुनिए ये कार्यक्रम।
1: आजादी का अमृत महोत्सव।

0: घर से इधर आती हूँ तभी आराम मिलता है। इतनी ठंडी हवा, बच्चे खेल रहे हैं, कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। अरे ये कौन आ रहे हैं? गौरी काकी? अरे गौरी काकी
1: अरे मेघा,
0: हाँ नमस्ते गौरी काकी।
1: नमस्ते। राम राम मेघा।
0: राम राम राम राम। अरे गौरी काकी, आज आप इधर कैसे आ गए?
1: बस यूं ही मन किया, आज अच्छा सा सुहाना मौसम था और शाम ढली थी। आज क्या तेरे काका जरा शहर की तरफ गए हैं तो भी थी, तो सोचा चल क्यों ना थोड़ा तालाब किनारे बैठा हूँ, जाया हूँ।
0: अरे गौरी काकी, आप तो सरपंच साहिबा है, आपको कहाँ टाइम हमारे पास बैठने की।
1: अरे नहीं, ऐसी क्या बात है मेघा, जैसी तुम वैसी मैं, है तो अपन इसी गांव के नागरिक। और
0: अरे
1: देखो ना मेघा, मेरा तो आज इतना दिल प्रसन्न होता है जब मैं सोचती हूँ अपने गांव के बारे में। जो पहले स्थिति थी गांव की, कि कहीं कचरा पड़ा है, जगह जगह गंदगी फैली हुआ करती थी, अब देखो ना। और जब से ये मिशन अमृत सरोवर आया है तब देखो ना, चारों तरफ कितनी खुशहाली सी छा गई है भाई, अलग ही फिजाएं। अब तो ऐसा लगता है कि क्या कहीं हिल स्टेशन पर कोई जाएगा। देखो इतनी अच्छी सुंदर सुंदर हमारे यहाँ भी नाव इस तालाब में तैर रही है। देखो ना बच्चे कितने खुश हैं, चारों तरफ वातावरण आह कितना सुख देता है, कितना आनंदमय लग
0: तो
1: रहा
0: गौरी काकी रोज आया करो, ठंडी टाइम होती है ना तब इधर आकर बैठा करो, कितना अच्छा दृश्य लगता
1: सोचा
0: है।
1: तो
0: और
1: यही
0: मैं तो
1: था।
0: सही बताऊं ना, कभी कभी घर का काम निपटा कर आ जाती हूँ, बच्चे खेलते रहते हैं और मैं ये कुछ मोबाइल में देखती हूँ, योग वगैरह, जो योग साधना भी कर लेती हूँ साथ
1: अरे
0: में।
1: वाह मेघा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब तुमने कहा है तो कोशिश करूंगी मैं भी। वैसे भी काफी दिन से सोच रही हूँ कि शाम को थोड़ा टहलना शुरू कर दूं, भी सेहत के लिए अच्छा रहता है।
0: अब तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी खाना बनाऊं, काम से फ्री हूं और सरोवर के पास जाकर ठंडी हवा का आनंद लूं।
1: सच मेघा, और देखो ये किसी एक के करने से नहीं होता, ना मेरे करने से ना तुम्हारे करने से, इसमें पूरे गांव का सहयोग रहा है, सरकार का सहयोग रहा है, तभी तो जाके आज हमारा गांव देखो कितना सुंदर चमन लग रहा है।
0: अरे अब

0: तो मुझे ये सरोवर साफ करना घर के काम जैसा लगता है गौरी काकी। जब भी आती हूँ शाम को देखती हूँ इधर उधर कचरा पड़ा है तो वहां पर डस्टबिन में जाकर कचरा फेंक देती हूँ। शाम को जब मैं सरोवर के पास में आती हूँ और जब भी देखती हूँ इधर उधर कचरा पड़ा है तो डस्टबिन में जाकर कचरा डाल देती हूँ।
1: भाई बहुत अच्छा, देखो एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका तुम निभा रही हो ना। और वैसे तो मेघा एक बात बताऊं कि हमारे गांव में अब सभी में इतनी जागरूकता आ गई है, ये तो हवा से कहीं से उड़कर आ जाता है। वरना मैं देखती हूँ आजकल हमारे गांव के बच्चे भी डस्टबिन में कचरा फेंकते हैं, और सच ये देख के दिल को बहुत सुकून मिलता है कि देखो कितनी जागरूकता आ गई है स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर, हमारे गांव के बच्चे बच्चे में ये जागरूकता आई है।
0: अरे ये गौरी काकी, ये कौन आ रहा है? जानी पहचानी लगती। अरे ये
1: जया।
0: हाँ हाँ जया ही लग रही है। अरे जया तू कितनी बदल गई।
2: अरे नमस्ते मेघा मैम।
0: नमस्ते बेटा।
2: नमस्ते सरपंच काकी।
1: नमस्ते जया बेटा, तू तो बड़ी सयानी हो गई रे, बड़ी हो गई तू।
2: अरे मुझे तो मतलब आप ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, ये अपना ही गांव है ना।
0: हाँ हाँ जया, ये जया जैसे तू बदल गई वैसा हमारा गांव भी बदल गया है।
2: अरे सच, ये इतना सुंदर तालाब, इतना सुंदर बगीचा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा काकी ये अपना ही गांव तो है।
1: अरे अरे आई है इतने दिनों से, बैठ तो तनिक, अपना ही गांव है बेटा। देख आखिर तो जीवन में परिवर्तन जो है वो जीवन का नियम ही है, और कितनी अच्छी बात है, कितना सुकून देता है वो परिवर्तन जो सकारात्मक दिशा में हो। तो बस यूं समझ कि हमारे गांव ने भी उन्नति कर ली, प्रगति कर ली, और सकारात्मक मार्गदर्शन लेते हुए सकारात्मक परिवर्तन आया है हमारे गांव में। देख आज तुझे बड़ी खुशी हो रही है ना गाँव आकर।
2: अरे सच, अरे काकी मैं तो जैसे ही गाँव पहुंची इतनी तो पक्की सड़क, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में, और यहाँ आऊं तो हर घर में रोशनी, मतलब लाइट भी सब जगह आ गई है और कोई धुआं भी नजर नहीं आ रहा है, मतलब सब में गैस आ गई है।
1: तो जब तू पढ़ाई के लिए शहर गई थी गांव छोड़कर, तब छोटी सी तो थी, उसके बाद तो तुझे गांव में देखा ही नहीं, कई वर्षों बाद तू आई है ना, अब तो ये सारे परिवर्तन दिखने ही है बेटा।
2: अरे सच काकी, और अब तो मुझे कहने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, पर जब मैं आ रही थी तो मन थोड़ा उदास था, मैंने कहा मैं ज्यादा नहीं रहूंगी, बस जाऊंगी सबसे मिलकर फिर से शहर आकर कोई नौकरी करूंगी।
1: अरे बेटा जया, ये गांव की मिट्टी है और हम मिट्टी से जुड़े लोग हैं बिटिया रानी, अब देख तेरा वापस जाने का मन नहीं करेगा।
2: सच सच बिल्कुल, अब तो मैं सोच रही हूँ मैं भी गांव में ही रहूं और स्कूल में रहकर बच्चों को पढ़ाऊं।
1: अरे ओ बिरजू भैया, बिरजू भैया।
3: अरे अरे सरपंच साहब, आया मैं आया।
1: अरे बिरजू भैया,
3: अरे क्या
1: इसको जानते हो, देखो अपनी छोटी सी जया।
3: अरे ये मैं तो बहुत छोटी देखी थी मैंने।
2: अरे
3: अरे जया बिटिया,
0: हमेशा परेशान करती थी ना आपको, ये वही जया है
3: बिल्कुल। अरे जया बिटिया, कहाँ शहर से आई हो ना बिटिया?
2: हाँ काका, आप कैसे हो?
3: मैं बढ़िया हूँ।
1: बिरजू भैया, अपनी जया शहर से पढ़ लिख कर इतनी सयानी होकर आई है, और देखो ना जया, ये बिरजू भैया है ना, ये हमारे यहाँ पे बोटिंग का काम देखते हैं इस सरोवर में।
3: हाँ। देखो जया बिटिया, मैं भी तुम्हारी तरह शहर चला गया था, तुमको तो पता है कि गांव हमारा अभी तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन कुछ समय पहले हालात मेरे ठीक नहीं थे तो यहाँ कुछ काम भी नहीं था, तो मैं शहर चला गया। लेकिन एक दिन अचानक मेरी किस्मत ऐसी जागी, सरपंच साहिबा का फोन आ गया, अरे बिरजू तू कहाँ है, गांव वापस आ जा। तो मैंने कहा सरपंच साहिबा गांव तो आ जाऊं, लेकिन मैं गांव में करूंगा क्या? तो सरपंच साहिबा ने कहा अरे आ तो सही तू, और मैं फिर दूसरे दिन सीधी गाड़ी पकड़ के गाँव आ गया।
2: अच्छा।
3: गांव आया तो बेटा देखा कि पूरा गांव ही बदला हुआ है। अब सरपंच साहिबा जब मुझे सुबह लेकर के गई, ये अमृत सरोवर देख रहे कितना सुंदर बना हुआ है।
2: सच मैं तो अभी तक मंत्रमुग्ध हूँ देखकर।
3: हाँ, अरे मेघा बहन, जब मैंने पहली बार जो देखा था ना, तो मेरा तो यूं समझ लो ऐसा लग रहा था कि मैं कहां स्वर्ग में आ गया। जैसे नाम अमृत सरोवर, ऐसे ही इसका पानी भी अमृत की तरह स्वच्छ।
0: अरे जया, तुझे पता है ये सब साफ सफाई किसने मिलकर की है? ये तो मेरी तरह मेरी बहनों ने, भाइयों ने, और साथ में मनरेगा वाले मजदूरों ने, स्कूल के बच्चों ने, एनजीओ ने, सब ने इकट्ठे होकर इस गांव को स्वच्छ बनाया है।
1: तो बेटा मेघा, ये अकेले के काम नहीं होते, ये तो सबका मिला जुला प्रयास होता है, जब जाके गांव इतना सुंदर बनता है। और देखो, अब बिरजू को बुलाने के पीछे तो मेरा यही मकसद था। मुझे लगता है भाई, गांव है वो मेरा अपना परिवार है, जब परिवार के लोग ही बाहर चले जाएंगे तो भाई गांव में बसेगा कौन, और गांव अगर उन्नति कर भी गया तो उसका लाभ कौन लेगा और देखरेख कौन करेगा। तो भाई परिवार के लोग परिवार में ही रहें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
2: काकी, ऐसी सरपंच हर गांव में होने चाहिए।
1: चल री।
2: हरे काका, आपकी नाव में मुझे भी तो बिठाओ।
3: अरे आपके लिए ये तो बिटिया, आप भी बैठो। और देखो, स्कूल के बच्चे तो छुट्टी के बाद रोजाना आते हैं। अरे बिटिया, नाव में बैठो और मैं शेयर कराता हूँ पूरे अमृत सरोवर की, और साथ में हम मेरे को जो सुकून मिला है, कैसे यहाँ पहुंचा, पूरी कहानी सुनाता हूँ। पहले नाव में बैठो।
2: हाँ।
3: नाव में घूमते रहेंगे और पूरी कहानी भी सुनाते रहेंगे।
2: ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो चलो, जल्दी चलो।
3: मेघा बहन, तुम भी आ जाओ। सरपंच साहब, आप क्या देख रही हो?
1: अरे मैं नहीं, नहीं तुम जाओ, तुम जाओ।
3: अरे नहीं नहीं नहीं, सरपंच साहब आओ,
0: आ जाओ ना।
1: चलो अच्छा, देखो इतना कह रही हो तो चलो।
3: हाँ देखो
1: बिरजू, जरा नाव धीरे धीरे चलाना, अब तुझे तो पता है।
3: हाँ गौरी, सरपंच साहिबा,
1: तो थोड़ा पानी से डर लगता है।
3: अरे मैं हूँ तो डर किस बात का। देखो, नाव चलाना तो हमारा खानदानी काम है, और पानी में तो देखो हमें तैरना भी आता है, तो मैं हूँ तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।
0: बिरजू काका, आपके सेफ्टी जैकेट दे दो हमें।
3: हाँ ले, ये तो पहनना जरूरी है। देखो मैं जब भी किसी को लेके जाता हूँ गांव में, तो ये है ना, जो ये जैकेट तो मैं जरूर पहनाता हूँ। हाँ ये
0: किसी बात का डर नहीं,
2: काकी ऐसे नहीं। हाँ ऐसे पहनो।
3: अच्छा, ये लाइफ जैकेट है देखो।
1: हाँ। इस लाइफ जैकेट को पहनने से क्या डूबते नहीं है पानी में?
3: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो आपका जो जो सर है वो पानी के ऊपर रहता है, जिससे आप सांस ले सकते हो, और जब तक सहायता ना मिले तब तक आप आराम से पानी में आराम से कुछ अच्छा, करने की जरूरत नहीं, आप पड़े रह सकते।
1: तो बिरजू देखो, मैं तुम्हें ये कहूंगी कि जब भी कोई नाव में बैठे तो उसे बिना लाइफ जैकेट के मत बैठाना।
3: कभी नहीं बैठा था सरपंच साहिबा मैं तो।
0: और नीचे बिरजू,
1: ये तुम्हारे लिए भी जरूरी है, तुम्हारा जीवन भी उतना ही सबके लिए महत्वपूर्ण है, तुम खुद भी इसे पहनो।
3: पर सरपंच साहिबा, हमारा तो पानी से बहुत गहरा रिश्ता है।
1: क्यों ना हो, भले ही हो बिरजू, लेकिन फिर भी जब हम जो दूसरों को हिदायत दे रहे हैं तो हमें खुद भी पहनना है। चलो चलो चलो, जया बेटी, चलो बिरजू काका को भी एक लाइफ जैकेट दो।
0: बिरजू काका, आपको भी पहननी पड़ेगी, इसकी सब हुक लगाओ, नहीं तो ये अगर लूज हो गया आप डूब जाओगे।
3: देखो, दो आगे बैठोगे तो दो पीछे, और बीच में बैठ के मैं नाव चलाऊंगा, बैलेंस बना रहेगा,
0: बैलेंस बराबर बना।
1: चलो चलो, लो मेरा हाथ तो पकड़ जाया बेटा,
2: आराम से आराम से।
0: अरे आराम से काकी।
2: हाँ, अब अच्छे से बैठ गए ना।
1: हाँ हाँ, अब आराम से बैठ गए।
2: हरे बिरजू काका, अपनी कहानी बताना मत भूलना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए।
3: अब मैं धीरे धीरे आपको लेके चलता हूँ, शेयर कराता हूँ अमृत सरोवर की। देख रहे हो ना कितना स्वच्छ जल है।
2: हाँ।
3: और जैसे मेघा बहन ने बताया कि बहुत साफ सफाई हम करते रहते हैं, स्कूल के बच्चे गांव वाले मिलके। मैं कह रहा था कि मैं जब मेरे गांव आया तो सरपंच साहिबा लेके आई मुझे इस अमृत सरोवर पे, तो मैं तो देख के दंग रह गया कि ये गांव में कैसे चमत्कार हो गया। गांव में तो मैंने देखा था ये गंदा संदा पानी इसमें आता था, बहुत सारा कचरा इसमें लोग डालते थे, बदबू आती थी, इसके पास से तो गुजरना ही बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब तो इसका स्वरूप ही बदल गया। सरपंच साहिबा, आपने बड़ी मेहनत की है, और ये जो कह रही थी ना आपकी जो सरकार की योजना आई, बजट आया अमृत सरोवर योजना, उससे ये अमृत सरोवर का निर्माण हुआ। और जो आपने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण का है, जो बारिश का पानी इकट्ठा करके इस तालाब को भरा जाता है। सरपंच साहब ने बताया था कि ये तालाब 12 महीने पानी से रहेगा। मैंने कहा कि मान लो पानी सूख जाए तो मेरी नाव कैसे चलेगी। तो उन्होंने कहा देखो हमारे पास व्यवस्था है, नहर के पानी की व्यवस्था है।
1: अच्छा, और यूं ही थोड़ी ना तुझे

0: शहर से मैंने बुलाया था।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है।
2: अब देखो, जब ये नदी है ना अपने गांव के पास वाली,
0: हाँ?
2: हमारे पूर्वज इस नदी के अंदर नाव चलाया करते थे। ये
0: हाँ?
2: बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा काम था, तो हम वहां से रोजी रोटी हमारे घर की चलती रहती थी। लेकिन अब क्या ट्रैफिक बढ़ गया, अब नाव से तो काम चलता नहीं है ना। अब तो बड़े बड़े भारी सामान इधर से उधर ला जा लेना लाना, तो यहाँ पर पुल की जरूरत थी। गांव वालों ने मांग की तो सरकार ने पुल बनवा दिया। अब सब तो चले जाते हैं पुल के पार, और अब थोड़े बहुत लोग घूमने वाले आते थे नदी की सैर करने, तो हमारा क्या है वहां पर गुजारा नहीं हो रहा था, तो हम शहर चले गए। अब जब शहर ये तालाब बन गया, तो मैं आया तो सरपंच साहिबा ने ये नाव मंगवाई और कहा कि बिरजू तुमको नहीं कहीं जाना और यही नाव चलानी है। मैंने कहा यहाँ कौन आएगा नाव में बैठने, कि अरे तुम शुरू तो करो, उसकी चिंता मत करो। हाँ
0: ग्राम तो है बिरजू, पर तू थोड़ा चप्पू चला, बातें बहुत करता है, नाव चलाने में ध्यान दे, तेरी काकी को तो डर लगता है।
2: अब देखो सरपंच साहिबा, हमारा तो काम ही खानदानी यही है कि नाव चलाते चलाते बातें करते करते सफर को आसान बना देना। अब मैं बताऊं सरपंच साहिबा, बेटा सुनो,
0: हाँ?
2: तो जब मैंने ये नाव लाया तो एक दो दिन तो कोई नहीं आया। मैंने कहा ये क्या बात हो गई। फिर जैसे ही गांव के सरोवर का उद्घाटन हुआ और फिर जो लोग आसपास के तालाब के सरोवर को देखने आए, और फिर तो शाम को रोजाना भीड़ की भीड़ उमड़ती है और मेरी नाव मुझे चलाने से फुर्सत ही नहीं है।
1: रोज एक मेले जैसा लगता है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है।
0: अरे काकी, पिकनिक पॉइंट जैसा हो गया हमारे शहर में।
1: वही तो मैं बता रही हूँ जया बेटी,
0: नहीं होते हैं
1: ये जो सरोवर है ना, ये केवल एक सरोवर नहीं है, अरे बेटी समझ लो कि ये एक कुंजी है हमारे गांव के उन्नति की। देखो कितने फायदे हैं, जल का संरक्षण होता है,
0: हाँ।
1: भाई वर्षा का जो पानी है वो इसमें आता है, और ये जो पानी है ये देखो, अब आज हम ये बोटिंग कर रहे हैं ना, नाव में घूम रहे हैं, तो ऐसे भी घूमने फिरने के तो काम में आ रहा है, और बिरजू जैसे लोगों को रोजगार मिल गया है। और देखो वहाँ दूर वो देखो बथुआ दिखाई दे रहा है, देखो अपना जाल फेंकता हुआ दिख रहा है,
0: हाँ।
1: वो क्या कर रहा है, देखो देखो गौर से, मछलियाँ
0: तो
1: पकड़ रहा है।
0: अच्छा मतलब काकी इस सरोवर में मछलियाँ भी हैं?
1: हाँ, तो देखो मछलियाँ जो हैं वो भी तो तालाब को स्वच्छ रखने में मदद करती हैं, मछली पालन भी हो जाता है, तालाब की सफाई भी हो जाती है, और ये पानी केवल घूमने फिरने के और बोटिंग के काम नहीं आता, ये खेती बाड़ी के सिंचाई के काम भी आता है।
0: क्या बात है
1: बेटी। और देखो अब ये लोगों को रोजगार इससे मिलने लगा, आजीविका चलने लगी सबकी, है ना। और दूसरा कि इस तालाब के बहाने हर घर से शाम को लोग, बच्चे, औरतें, और देखो वो वृद्ध जन सब आके इसके किनारे बैठने लगे, आपस में बातचीत होने लगी, तो ऐसे सब में सौहार्द और प्रेम भी तो बढ़ा है।
0: अरे काकी एक बात तो बताना भूल गए आप।
1: हरी बोल।
0: अरे हर 15 अगस्त में आप यहाँ आती है और फिर यहाँ पर सरोवर पर क्या करती है बताओ।
1: अब तू ही बता दे।
0: हर 15 अगस्त में झंडा फहराती है।
1: भाई वो तो देखो जरूरी है ना, राष्ट्रीय पर्व
0: है, सम्मान भी मिलने लगा है।
3: अरे काकी सच में यहाँ आकर तो, और अमृत सरोवर नाम भी कितना अच्छा रखा है ना, सच में अमृत जैसा लग रहा है यहाँ पर, और इतना सुंदर बगीचा, इतने अच्छे अच्छे फूल, मतलब लग रहा है जैसे बिरजू काका ने कहा हम तो स्वर्ग में ही आ गए हैं।
0: अरे जया तेरे को पता है अब गांव में जितने भी तालाब है ना उनके नाम रखे गए हैं।
3: अच्छा।
0: जो भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी या शहीद लोग है ना उनके नाम से इन सरोवर को बुलाया जाता है।
3: अच्छा।
0: हाँ, ऐसे ही नहीं बोलते वो पीपल वाला सरोवर, वो नीम वाला सरोवर, अब वो गया जमाना।
3: अच्छा ऐसी बात है।
0: हाँ।
3: ये तो बड़ी अच्छा हो गया, इसी बहाने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मान मिलेगा।
0: हाँ।
3: तो मेघा मैम, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो अमृत सरोवर बन गया है, यहाँ आसपास इतने बगीचे और इतना, तो ये क्या अब हर गांव में हो रहा है?
0: हर गांव में, यहाँ तक एक जिले में 75 सरोवर होंगे।
3: क्या बात कर रहे हो। अरे मतलब अब तो शहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
1: 75 तालाबों का निर्माण या उनका जीर्णोद्वार, भाई कहीं जल तालाब है पुराने बने हुए हैं तो लेकिन वो उनकी सफाई नहीं हो रही है या उनमें जल स्तर नीचे चला गया है।
3: अच्छा।
1: तो उनके जल स्तर को ऊंचा लाना और इससे

0: भूजल स्तर भी सुधरता है, कई फायदे हैं इसके।
1: बात तो सही
0: तो है। ऐसे स्थानों को रमणीक भी बनाया जाता है, हाँ। है ना, तो देखो कितने काम भी आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, रमणीक जैसे ये है ना, तभी तो बच्चे यहाँ देखो, बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं, छोटे छोटे झूले लगे हैं बच्चों।
0: अरे ओ बिरजू, कहाँ खो गए? अरे
2: अरे सरपंच साहिबा, मैं तो आपकी मीठी मीठी बातें सुन रहा था। आप तो बहुत अच्छी बातें करती हैं, तो मैंने कहा आपकी सुन ली जाए। आप तो कहती है मैं बहुत बोलता हूँ बहुत बोलता हूँ, तो मैं तो आराम से आपकी बातें सुन रहा था।
0: अरे तो तुझे चुप होने के लिए थोड़ी ना कहा था, वो तो मैंने इसलिए कहा था, तुझे पता है ना मुझे नाव में थोड़ा डर लगता है, तो बस तू नाव चलाने की तरफ भी तेरा ध्यान रहे इसलिए कहा था।
1: बिरजू काका नाव चला रहे हैं, फिर डरने की क्या बात है?
2: देखो सरपंच साहिबा, मुझे तो अपनी वो पूरी बातें याद आ गई कि कैसे मैं गांव से शहर गया था और वहां कितना परेशान था शहर में। अब मेरे जैसे अनपढ़ को शहर में क्या काम मिले, वहां तो थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाती थी और वहीं कहीं फुटपाथ पे सो जाता था। अच्छा हुआ जो आपने मुझे वापस बुला लिया और मुझे यहाँ पर गाँव आकर के मुझे एक बेहतर जिंदगी दी है। ना सिर्फ मेरा यहाँ पर रोजगार चल रहा है, बल्कि देखो मेरा यहाँ पर बहुत सारे लोगों से रोजाना मिलना होता है और देखो सम्मान भी खूब मिलता है।
0: अरे देख बिरजू, मेरा तो मानना है कि घर छोड़कर जाए तो उसका कभी भला हुआ है आज तक, और ये गांव भी तो अपना घर ही है। देख आज ये खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं, यहाँ रहने वाले इतने लोग हैं, छोटे छोटे व्यवसाय जिनके चल रहे हैं, महिलाएं हैं जो लघु उद्योग चला रही हैं। अगर सभी ये सोच ले कि हम शहर जाएंगे तो फिर गांव में रहेगा कौन, और गांव में कोई रहेगा ही नहीं तो गांव का विकास कैसे होगा?
1: अरे गौरी काकी, वो जो श्यामू गगन वो सब शहर गए थे ना, अब वो इस तरीके के गांव देखकर वापस आ गए हैं, अब शहर में नहीं रहते।
0: हरी ज्यादा दूर क्यों जाती है बेगा, जरा अपने बगल में बैठी जया को देख, जब ये आई थी और नहीं तो क्या, देख जरा इसका चेहरा देख कैसा खेलता है।
1: अब तो बच्चे भी जिद नहीं करते छुट्टियों में बाहर जाने के लिए, इतना अच्छा वातावरण मिलता है गांव में।
0: बिल्कुल,
1: और मैंने भी तो अब कहा ना काकी, अब मैं भी यहीं रहूंगी और स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी।
0: अच्छा, बस इतनी जल्दी इरादा बदल गया तेरा?
1: हाँ काकी,
0: मैंने तो पहले ही कहा था जो यहाँ आता है उसका वापस जाने का मन नहीं करता।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही काकी आपने।
0: और देखना यहाँ जितनी खुली खुली और इतनी फ्रेश आबो हवा जो यहाँ की है, शहरों में कहाँ भला ऐसी, इतने वाहन बढ़ गए हैं, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ देख कितना स्वच्छ वातावरण, कितना सुकून, कितनी शांति है यहाँ पे।
1: बिल्कुल काकी, और जितने भी पक्षी बोल रहे हैं उन सब की आवाजें कितनी साफ सुनाई दे रही हैं, और शहर में तो गाड़ियों के शोर में ये सब कहाँ सुनने को मिलता है।
3: अरे जया, अब तो अपने गाँव में पानी की भी कमी नहीं है, हर घर नल है, तो इतना स्वच्छ पानी घर में भी मिलता है और बाहर भी है।
0: हर घर में जल है, हर घर में शौचालय है। एक पुराना जमाना हुआ करता था जब कहीं गांव में कोई छोटा मोटा तालाब होता था, धोबी अपने कपड़े वहां धोते थे, पशुओं को लेकर लोग अपने वहीं जाते थे, अपने पशुओं को स्नान कराते थे, महिलाएं खुद स्नान करती कपड़े धोती, वो सारा गंदा पानी उसमें जाया करता था। तो वो तालाब गंदे होकर वापरने का लायक पानी उनका नहीं रहा करता था।
3: काकी साथ ही में उन्हीं उसी तालाब के पानी से घर में खाना भी बनता था।
0: तभी तो बीमारियां फैलती थी। अब देख कहीं सुनने को मिल रहा है जा, कहीं नहीं। देख स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, पर्यावरण का लाभ हो रहा है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो,
3: साथ ही साथ इन सरोवर को सम्मान भी मिल रहा है।
2: और सरपंच साहिबा एक बात और कहूँ?
0: हाँ हाँ बोल।
2: देखो आप सब बोटिंग करने के लिए तो आ ही रहे, लेकिन आपको मैं बताऊं, मेरा अनुभव है कि दूर दूर से यहाँ बहुत सारे पक्षी तरह तरह के आने लगे हैं, और बच्चे मुझे पूछते हैं काका ये कौन सा पक्षी है, ये कौन सा है, बड़े बड़े सारस, और देखो आपने जो बतखें ला के यहाँ पे छोड़ी थी ना, उनके बहुत सारे बच्चे हो गए हैं और वो भी घूमते रहते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में एक ये पक्षी अभयारण्य के रूप में भी ये लोग यहाँ पर देखने आएंगे इसको।
0: अरे बिरजू मैं तुझे बताऊं, तूने जब बात निकाली है पक्षियों की तो मुझे याद आया कि परसों ही हमारे गांव में एक विदेश से दो व्यक्ति आए थे जो कि क्या कहते हैं वो बर्ड वॉचर है ना, जो नए नए पक्षियों के बारे में जानकारी लेते हैं और उनकी प्रजातियों के बारे में जानकारी लेते हैं, और किसी किसी का शौक भी होता है। तो हमारे गांव की तरफ लोगों का ये रुझान भी हो रहा है, कितनी अच्छी बात है ये हमारे लिए।
3: अच्छा, ये तो मतलब अपना गांव तो विदेशों में भी फेमस हो गया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: सरपंच साहिबा, एक बात और कहूँ,
0: हाँ?
2: कि ये जो आपने पेड़ आसपास जो लगवाए ना तालाब के, इनके अंदर देखो छोटे छोटे पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं, यानी ये आबो हवा उनको पसंद आ रही है, ये अपना यहाँ पर स्थायी घर बना रहे हैं, और जहाँ पर पक्षी और इंसान साथ में रहें तो वो स्वर्ग बन ही जाता है।
0: बिल्कुल बेटा। और देखो यहाँ हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, उसमें हर छोटे से छोटे जीव का अपना महत्व है बेटा। बिरजू देख, अभी जो पक्षी हैं, जो गिरी भी छोटी छोटी टहनियां होती हैं और छोटी छोटी ये जो तार ये सब, तो कितनी चीजों से मिलकर ये सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं। और जो हमारे जानवर हैं उनके ऊपर के जो छोटे छोटे कीट हैं उनको ये खाते हैं तो उनकी शुद्धता हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये कि हर छोटे जीव की अपना एक महत्व है।
2: सरपंच साहिबा, देखो पूरे अमृत सरोवर का चक्कर लगा के वापस अपने घाट पे आ गए। पता चला क्या समय?
3: बिरजू अका, बातों में तो पता ही नहीं चला कि हम कब घूम कर आ गए।
2: एक मिनट, मैं नाव को किनारे लगा देता हूँ, आराम से उतरना एक एक करके।
0: अरे जरा मेरा हाथ पकड़ना।
2: जय बेटा, हाथ पकड़ के उतारो।
0: अरे थोड़ा,
2: अरे अरे बस धीरे धीरे।
3: अरे काकी, अब जैकेट तो उतार दो।
0: मैं भूल ही गई, घर नहीं ले जाना।
2: अरे जया बेटा, अब बताओ कैसा लगा हमारा अमृत सरोवर, कैसा लगा गांव?
3: अरे खाका, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचे कुछ कहने के लिए, इतना सुंदर सब कुछ देख लिया शहर में, ये सब कहाँ। और अगर मैंने कहा ना पिकनिक पॉइंट शहर के, जो वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं जो कि यहाँ देखने को मिला है।
4: अरे जया, ये देख रही है नीम का पेड़? यहाँ पर सब लोग आते हैं और कच्चा नीम लेकर उसको चबाते हैं, और साथ ही में जो नीम की सूखी पत्तियां होती है उसको जला देते हैं साथ में इकट्ठा करके, ताकि मच्छर भी नहीं रहते यहाँ पर।
2: देखो सरपंच साहिबा, वो साहिबान और आ गए बच्चों को लेके, अब मैं तो चला इनको घुमाने।
0: जा।
2: आपने मेरे लिए तो सचमुच यूं कहें कि एक नया जीवन दे दिया। अमृत सरोवर को तो नया जीवन मिला ही, लेकिन साथ में ऐसे कई लोग हैं जिनको ऐसे अमृत सरोवर से न सिर्फ नया जीवन मिला, बल्कि गांव वाले जो है आनंदमय तरीके से, एक तरह से यूं कहें कि अपने गांव में ही सारी सुख सुविधाओं पूर्वक यहां पर रह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सरपंच साहब, मैं तो चला। आओ अच्छा,
0: अरे, आओ अरे, हाँ जा जा भी, तू उनको लेकर जा नाव में। अरे जया बिटिया, चल ना आज मेरे घर ही खाना खा लेना।
3: अरे नेकी और पूछ पूछ, पर काकी मैं तो आपके हाथ की गट्टे की सब्जी खाऊंगी।
0: हाँ हाँ जरूर खिलाऊंगी। मेघा सुन, ऐसा क्यों नहीं करती तू भी चलिया?
4: हाँ चलो ना फिर, मुझे तो समय पे वापस घर जाना पड़ेगा।
0: अरे चली जाना चली जाना, लो आओ चलो,
4: लो चलो बच्चों चलो।
5: आजादी का अमृत महोत्सव।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राही हम अपनी राहों के, जिसमें आपने सुना अमृत सरोवर योजना के बारे में, जिसका निर्देशन किया था रामजीलाल मीणा ने और प्रतिभागी थे श्यामवीर सिंह, मनीषा पुरोहित, नेहा व्यास और प्रार्थना बिस्सा। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

अभी आपने अवतार तारिक की आवाज में आजा नचले फिल्म का ये गीत सुना। आइए आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत में ये अगला गीत, कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है थ्री इडियट्स और जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में ये अगला गीत। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म का नाम है चलते चलते।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 8:30 हुए हैं, समय हुआ है सुगम संगीत का, और आज हम आपको सुनवाएंगे गजलें जगजीत सिंह और चित्रा की आवाज में।

0: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 8:45 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कैनेडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसर ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is really our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
5: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि, मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
6: We had 26 delegates from
7: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
8: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 समय

0: क्योंकि मलबे की खेड़ से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: I also refer to the unwarranted...
3: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूँ। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहाँ राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
2: It has always been, is and will remain so.
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत।

बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत, हम आपको सुनवाते हैं ये गीत जिसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। फिल्म का नाम है बादशाह।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे।
1: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे।
1: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा

0: ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना जिसे गाया था आशा भोसले ने। फिल्म का नाम था कॉर्पोरेट। तो इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। FM बैंड 101.8 MHz पर रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम चर्चा का विषय।
1: तो हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
2: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
1: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
2: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की, वो किस तरह से हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
2: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
2: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्ट ह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का ये बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
1: जी जी।
2: और वो नित्य नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन AI से रिलेटेड, और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही है। तो कुल मिला के इन 6 एंट्रीज में 6 जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशन आ रही हैं।
1: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गाँव से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित है, हाशिए पर है, दिव्यांग है, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
2: अवश्य। देखिए, हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के, और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
2: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशन होंगे, और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी,
2: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशन किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशन कर सकती हैं।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
2: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं और उन बच्चों को, वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों जो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने और कार्यक्रम जहाँ भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक है या परिवार है, अभिभावक है या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जिससे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण है, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
2: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देते हैं। इसके अलावा रेलवे पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशन भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं जैसे आंगनबाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सके। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशन हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशन करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशन आए ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी, आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: थैंक यू सो मच।
1: अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपने कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉर्टफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहां से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
3: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी,
3: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्टपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है
1: जी।
3: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी 6th से 12th तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना वो नहीं करना तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने उसके बाद बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम हमारा है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को आदत पढ़ने के लिए विदाउट हैंड करने के लिए जो भी। फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ सिक्स से लेकर ट्वेल्व तक। फिर एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली सारा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था। तो मेरा शॉट पुट जावलिन में अच्छा था तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, साथ में कॉम्पिटिशन भी देते हैं। वैसे मैं शॉट पुट जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ, इंडिया के लिए चार गोल्ड मेडल लाई हूँ। और ऐसे मेरे पास अभी तक 19 मेडल था, उसमें से 16 गोल्ड सिल्वर 2 ब्रॉन्ज है। और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे से।
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ। जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे। और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं।
3: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़े लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी। फिर सोचा भी है कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोचती थी। पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है, उधर जाके सर से पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा और वो सच्चा बहुत अच्छा लगा।
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया। साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं। चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं। बहुत स्वागत है आयशी आपका।
4: नमस्कार सर, थैंक यू सर।
1: जी तो बताएं अपने बारे में, आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं। जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है?
4: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं। सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में, सो दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन दीज स्टफ एंड या आई वांट टू वर्क फर्दर ऑन इट, मेकिंग मोर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एंड व्हाटएवर आई कैन डू।
1: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
4: राइट नाउ आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, आई डोंट नो अबाउट स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट एज ऑफ टुडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज टू कम अप विद द मोस्ट सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू ऑल द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, and if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that. But right now I am just focusing on building the solutions, and as of now I am trying to focus on my studies also, as I am a 10th grader this year.
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं।
4: It was something that I never dreamed of, and even today, आज भी मैं सब नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू बी ऑनेस्ट।
1: थैंक यू सो मच आयशी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने एक्सपीरियंस अपने इनोवेशन के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत डिटेल में बताया. थैंक यू सो मच.
4: थैंक यू सर.
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश दयाल. वंश दयाल ने अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है, तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे. वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा. हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया. बताएं अपने बारे में कुछ.
5: तो ये मौका मिले बहुत ही कठिन समय रहा, जब मेरे माता पिता नहीं थे, बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए. बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पे, बहुत मुश्किल था लाइफ में ना. जब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसी रह जाऊंगा. वहाँ मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना. फिर थोड़ा होप हुई, एक फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में. फिर देखा वहाँ पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना कुछ, चार पाँच महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया. वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए. उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, उसको मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था. तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको भी हाँ उसकी हालत ऐसी है. तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ. तो आई वॉज वेरी इंस्पायर फ्रॉम हिम कि हाँ कैन डू, वाई यहाँ सर्वाइव तो मैं तो क्या ही हूँ. मतलब फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम. तो काफी अच्छा मौका था मेरे लिए, मैंने काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा. और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबके लिए हेल्प करना और हेल्प आउट करके, मतलब मदद करके उस बच्चे को मैंने काफी नई चीज टू डे की वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से. तो काफी था ये समय. फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नॉमिनेशन हो जाता है सोशल वर्क में. तो मेरे सुपरिटेंडेंट रहते मैं चला लेता रोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया. काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो. तो फिर उन्होंने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा.
1: बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात है. हम आपसे और जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
5: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए. उनका साथ में कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके उन्हें हेल्प करना चाहूंगा मैं.
1: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी, कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से. सुमन सरकार एक तबला वादक है, छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है. तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है. बहुत स्वागत है सुमन आपका.
6: सर आपको बहुत धन्यवाद.
1: तो सुमन बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपका अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं.
6: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था. तो तभी मैं ये तबला को मतलब आसपास की जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था. मेरे फादर का जो बहुत सपना था वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे. मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे. तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया. तो जब मैं 3 साल का उम्र का था तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है. तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गांव में. मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री कुबेर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया. तो वहाँ से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ तो मेरा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम था, कंपटीशन था। तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
1: बिल्कुल।
6: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और बच्चे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
1: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
6: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
6: थैंक यू सर।
1: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक AI पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इस इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने AI के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
7: मेरा जो AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है। जैसे पैरालिसिस पेशेंट, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट। ये जो AI इनोवेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट कर रहे हो।
1: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
7: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
1: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर इसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत और आज हम आपको सुनाएंगे मुल्तान खान और पार्टी के गाए कुछ लोकप्रिय लोकगीत।

ਹੋਣ ਅਨੁਖੇ ਬੰਧਵ ਬਿਠਾਜ ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਵ ਪਧੋਮਣਾ ਪਧੋਮਣਾ ਘਰ ਘਰ ਘੁੰਮਰ।

Yeah,

Thank you.

Poner a

Homem Mauri, Nagi, Ade Nagori, Nagori, Homem Mauri, Ade Madhoni.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुल्तान खान और साथियों की आवाज में कुछ लोकप्रिय लोकगीत। तो लीजिए सुनिए ये अगला गीत।

ಕಣಿಯೇ ಓ ರಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಚಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಚಿತಾರೆ.

அது ஹாலி நோட்டு.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत और ये गीत सुनवाते हैं आपको सोनू निगम की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल से।

अभी आपने अभिजीत की आवाज में दिल ही दिल से फिल्म का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत में ये अगला गीत, सोनू निगम और सुजाता त्रिवेदी की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल ने जिसे अपना कहा।

0: श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में। ये अगला गीत उदित नारायण की आवाज में, फिल्म का नाम है दिल जले।
1: करती है,
2: हो नहीं सकता,
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता,
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों को और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों को, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया।

0: मंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आम चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सुबह पुनः 5:53 पर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।
4: Corridor and metro rail sectors across 4 states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in omission mode and ensure close monitoring of project implementation. The Prime Minister also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for efficient planning and timely execution of infrastructure projects. The Prime Minister's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases. Mr. Modi urged states to work towards enabling E0 FIR mechanisms for quicker registration and response to cyber fraud complaints. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with US Trade Representative Ambassador Jamie Sun Greer and his delegation in New Delhi today. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-US trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Cho Hyun in Seoul, he stressed that the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever. Oman has announced the opening of a temporary maritime corridor through the strategically vital Strait of Hormuz. It marked a significant step toward restoring commercial shipping and easing a maritime crisis that has left thousands of seafarers stranded in the Gulf. The Omani government said the initiative was developed in coordination with the United Nations International Maritime Organization, or IMO, to facilitate the safe movement of vessels through the waterway following months of disruption linked to regional conflict. The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. According to the advisory, Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. India and Russia are working to further enhance their bilateral trade with a target of reaching $100 billion by the year 2030. Kremlin spokesman Dmitry Peskov today said that trade between the two countries is already showing a steady upward trend, currently standing at around $60 billion. He noted that both nations are committed to expanding economic cooperation across sectors. In Arunachal Pradesh, heavy rainfall and flash floods have caused widespread damages at Nipko Colony in Yazali's Circle under K. Panyor district today. As per the latest reports, four people are missing. Authorities have not yet confirmed any casualty as they are assessing the extent of the damage. Union Minister Kiran Rijiju has appealed to the people in flood-affected areas to remain cautious. In a social media post, Mr. Rijiju urged the people to stay updated through official channels and follow all safety advisories. In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in Group B match at Vancouver in Canada tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. IST. In another fixture, Bosnia and Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. And that is the end of this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है FM 101.8 MHz पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल दिन के 11:55 पर हमारी अगली प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।